جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے.

आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म और दानिश के सबब मिली है, नहीं बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते।

0: उन पर उनके आमाल के वबाल पड़ गए और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर उनके अमलों के वबाल अनकरीब पड़ेंगे और वो खुदा को आजिज नहीं कर सकते।
1: अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर इन फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमी यूमिनून।
0: क्या उनको मालूम नहीं कि खुदा ही जिसके लिए चाहता है रिज्क को फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

और उन्होंने खुदा की कदर शनासी जैसी करनी चाहिए थी नहीं की, और कयामत के दिन तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहने हाथ में लिपटे होंगे, और वो उन लोगों के शिर्क से पाक और आलीशान है।

और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे।

0: साहब।
1: और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि खुदा इसके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह खुदा उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो।
0: अल्लाह

जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेशुमार रिज्क मिलेगा।

0: बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोजख में हैं, खुदा बंदों में फैसला कर चुका है।
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب।
0: और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोजख के दारोगा से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज तो हमसे अजाब हल्का कर दे।
1: قال

0: और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और ना ईमान लाने वाले नेकुकार और ना बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो।
1: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
0: قیامت تو آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے
1: وقال

खुदा ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीजा चीजें खाने को दी। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है। बस खुदाए परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है।

और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामान मईशत मुकर्रर किया सब चार दिन में और तमाम तलबगारों के लिए यकसां।

फिर दो दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चराग़ों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये जबरदस्त और खबरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं।

यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और चमड़े यानी दूसरे आजा उनके खिलाफ उनके आमाल की शहादत देंगे।

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

0: जिन लोगों ने नसीहत को न माना जब वो उनके पास आई, और ये तो एक आली रुतबा किताब है।
1: ला यातीहि अल-बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद।
0: इस पर झूठ का दखल न आगे से हो सकता है न पीछे से, और दाना और खूबियों वाले खुदा की उतारी हुई है।

जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे करेगा तो उनका जरर उसी को होगा, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग, जाग जाग, पाकिस्तान जाग जाग।
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मेरी हमेशा लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी के आर के साथ। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम सर शाहिद से बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स कम्युनिकेशन है, उनसे प्रोफेशनल करियर और उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में। सर, अब ये बताएं कि प्रोफेशनल करियर से किस तरह से एकेडेमिया को ज्वाइन किया, कहाँ सोचा कि अब मुझे जो मैंने सीख लिया है मैंने जाके पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है, वेल ट्रेन करना है, ताकि जब वो मीडिया इंडस्ट्री में आए तो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज मैंने देखे उन्हें ना देखने पड़े।
4: अच्छा, मैं क्योंकि काम कर रहा था प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, और उसके साथ ही फिर मैंने टीवी चैनल्स को भी ज्वाइन किया, जिसमें मुझे जियो टीवी और दुनिया टीवी के साथ काम करने का कुछ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं वहाँ पे इंडस्ट्री में था तो मुझे कमी महसूस हुई कि जो मेरी एजुकेशन है मीडिया की वो उस तरह से नहीं है। मीडिया आपका ना टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, जो इसकी एक इसकी नेगेटिव चीज़ है कि मीडिया आपका टाइम ज़्यादा मांग रहा होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मेंटली भी और प्रैक्टिकली भी। और वो अगर आप घर वालों के साथ हो तो आपको कहीं ना कहीं गैप फील होता है कि आप घर वालों को आप थोड़ा सा कम टाइम देते हैं और मीडिया को आपको ज़्यादा टाइम,
3: बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है।
4: तो वो मुझे भी फील हो रहा था कि मुझे घर वालों को टाइम की ज़्यादा ज़रूरत थी, एक वक्त था कि मुझे अपने घर को ज़्यादा टाइम दें। तो वहाँ मैंने सोचा कि मुझे जो प्रैक्टिकल फील्ड से निकल के थोड़ा सा एक तो पहले इसको लर्न करना चाहिए, जो भी इसके डायनेमिक्स हैं, जो भी इसकी एजुकेशन है, ताकि मैं एक तो एक्सेल कर सकूँ, जब मेरे पास टाइम हो तो मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकूँ, और दूसरा कि मुझे घर के वालों के लिए टाइम भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें, एक तो मेरी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एजुकेशन मीडिया की वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो मुझे हासिल करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक एकेडमिया की साइड पे आया, और दूसरा ज़रा मुझे टाइम भी चाहिए था। तो वो फिर मैंने स्विच किया, फिर मैंने अपनी जो एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन तो की हुई थी अपनी 12 साल के बाद, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मीडिया में मैंने मास्टर्स किया 2012 में, और फिर उसके साथ ही फिर मैंने एमफिल भी मीडिया में ही किया। मीडिया में जब मैंने एजुकेशन हासिल की तो फिर मुझे ये शौक भी हुआ कि अच्छा मैंने पढ़ा भी है इसको, और जब मैंने एजुकेशन हासिल की तो मुझे फील हुआ उस टाइम पे कि वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और वो जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकल कर रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड से आया था। मैंने ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, फीचर फिल्म से उनके साथ भी मैंने काम किया, फिर जो पाकिस्तान के टॉप के टीवी चैनल्स हैं जियो टीवी, दुनिया टीवी, और इवन स्पोर्ट्स टीवी जो है 10 स्पोर्ट्स, उसके साथ भी मैं काम कर चुका था। तो मुझे फिर फील हुआ कि वो एक गैप है बीच में, जो कि एकेडमिया का और प्रैक्टिकल फील्ड का, और वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो मैंने उस वक्त फिर सोचा कि अभी मेरे पास कुछ और टाइम है जो कि मैं घर वालों को दे सकता हूँ, और तो उस दौरान एक एकेडमिया एक ऐसी फील्ड थी कि जो मैंने कोशिश की और जो मेरी ख्वाहिश भी बन गई कि मुझे जाना चाहिए एकेडमिया में, और वो स्टूडेंट्स जो कि नए नए आ रहे हैं मीडिया में और मीडिया को समझना चाह रहे हैं और उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे मैं जाके मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोई टिप्स उनको दे सकूँ, कोई प्रैक्टिकल के साथ जो एजुकेशनल है जो गैप है मैं उसको फिल कर सकूँ। तो यही मेरी ख्वाहिश थी, और फिर मैंने उसको पूरा करने के लिए फिर एकेडमिया को ज्वाइन किया, और यहाँ आने का ज़रा मेरे ख्याल में मेरा एक अच्छा बेहतर फैसला था कि मैं एकेडमिया में आया। ना सिर्फ उससे मेरी अपनी लर्निंग बढ़ी, बल्कि वो जो कुछ मैंने लर्न किया था मीडिया से भी और एकेडमिया से भी, वो मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाया।
3: और सर, जब आप स्टूडेंट्स को क्लास पर पढ़ाते हैं, जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं वो कितने एंथुजियास्टिक आपको फील होते हैं, आपको क्या उनको पढ़ाते हुए फील होता है कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये बेहतर तौर पर, और उनको आप किस तरह से मीडिया और इंडस्ट्री एक्सपोजर के बारे में समझाते हैं?
4: अच्छा, फिल्म के स्टूडेंट्स स्पेशली होते हैं, वो ज़ाहिर है वो ज्वाइन करते हैं, वो एक शौक के साथ तो आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें शौक तो ज़रूर होता है कि हम फिल्म बनाएंगे, फिल्म के लिए काम करेंगे या ऑन स्क्रीन काम करेंगे टीवी ड्रामा के लिए, लेकिन उनमें वो जो सिर्फ शौक की हद तक तो कुछ बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो फीलिंग आ रही है और जो बच्चे हमारे पास आ भी रहे हैं और एक्सपीरियंस हो रहा है, उनमें वो जो जोश और जज्बा होना चाहिए और वो काम करने की लगन होनी चाहिए, उसमें कमी है। और इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, और जब वो ये देखते हैं कि इस फील्ड में कितनी सख्ती है या कितनी रिक्वायरमेंट है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो अभी एंथुजियाज्म ज़रा है, और जो है जिन बच्चों में तो वो एक्सेल भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा जो हम अपने टीचर्स यहाँ से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो उनसे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद वक्त के साथ शायद कुछ कम हुई है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपना गोल सेट नहीं कर पाते कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में आते हैं तो उनका एक्चुअल गोल क्या है, क्या वो ऑन स्क्रीन काम करना चाहते हैं या बैक स्क्रीन काम करना चाह रहे हैं, अगर बैक स्क्रीन है तो बैक स्क्रीन में कौन कौन सी ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा बच्चों को, हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हम बच्चों को ये चीज़ें डिलीवर कर सके और उनको जो मीडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहुंचा सके, जिसमें आवाज़ भी है, ऑडियो है, वीडियो है, विजुअल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, एनिमेशन हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारा स्किल सेट हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। लेकिन बच्चा किस एक या दो या ज़्यादा स्किल सेट को अपनाता है ये उसकी उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे उस स्किल सेट को हासिल नहीं करते, शायद अपने दीगर वजूहात की बिना पर, लेकिन अगर वो स्किल सेट को हासिल करें तो यकीनन वो एक्सेल कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा के बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में क्या ऐसी सर्टेन टास्क हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि उन्हें पहले से आइडिया हो कि जब हमने मीडिया एक्सपोजर लेना है तो हम ये सब चीज़ें हैं या ये फील्ड या कैरियर है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं।
4: देखिए, ऑन कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को डायरेक्टली नज़र आ रही होती है और हर कोई ये समझता है कि मैं ऑन कैमरा आ सकता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। हमें अपना एनालिसिस करना, स्टूडेंट्स को अपना एनालिसिस करना कि क्या वो ऑन स्क्रीन के लिए ठीक हैं या नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बैक ऑफ द कैमरा भी काम करते हैं तो आपने ये बेस्ट एनालाइज करना है कि ऑन कैमरा क्या अच्छा लग रहा है, कौन से फेजेस ऐसे हैं जो कि अच्छे लग सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बोलने में अच्छे हैं या परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। ये आपका अगर आप अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे दूसरों के बारे में तो आप अपने के बारे में भी ये अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे। तो ऑन कैमरा की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो आपकी अपीयरेंस काउंट होती है। अपीयरेंस का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती क्योंकि हर शख्स के लिए डिफरेंट है, और जब हम ऑन स्क्रीन के लिए काम करते हैं तो हमारे जो करेक्टर्स हैं, जो हमारी कहानी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। वो खूबसूरती किसी के मोटे होने में भी है, किसी के पतले होने में भी है, किसी के स्मार्ट होने में भी है, किसी के गोरे होने में भी है, और किसी के काले होने में भी है। क्योंकि हमारे जो किरदार है ना, कहानियाँ तो किरदारों से बनती हैं और हर किरदार एक मुख्तलिफ किस्म का रोल प्ले कर रहा होता है, अपनी कहानी को किस तरह से आगे लेके चल रहा होता है। तो लेकिन स्क्रीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो किरदार है वो लोगों तक असल में रियलिटी के साथ लोगों तक पहुंच पाए ना, तो उसमें लोगों का, उसमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो एक्टिंग की स्किल है स्पेशली वो बेहतरीन हो, और अगर वो प्रेजेंटेशन न्यूज़ चैनल्स में के हवाले से देखते हैं कि वो ऑन स्क्रीन न्यूज़ एंकर हैं या वो प्रोग्राम के होस्ट हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ आपकी अपीयरेंस काउंट होगी बल्कि जो दूसरी चीज़ है, आपका वर्बल जो आप बोल रहे होते हो, जो आपका नॉलेज है, जो आपका
3: कम्युनिकेशन
4: स्किल है और स्टाइल है, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। और ज़ाहिर जो टीवी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आपको फ्लुएंसी भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, और आपको करंट अफेयर्स का मालूमात होना भी ज़रूरी है, और आपका फ्लुएंट होना भी ज़रूरी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन स्क्रीन के लिए काउंट होती हैं। तो वो सब स्टूडेंट्स ज़ाहिर वो नहीं हो सकता, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ तरह से पैदा किया हुआ है। तो ये एक तो अपना एनालिसिस करना कि हम ऑन स्क्रीन के हैं या नहीं है, अदरवाइज ऑफ स्क्रीन पे बेशुमार काम है। पहला जो स्किल सेट है वो आपका राइटिंग का है। जो मीडिया में जो भी स्टूडेंट आता है, जो भी शख्स आता है, उसकी जो मेन असल स्किल है वो उसकी राइटिंग की है, कि अगर वो लिख सकता है ना तो फिर उसके पास एक बहुत बड़ी स्किल है। पाकिस्तान में क्या मीडिया जहाँ पे भी है, आपके राइटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि आपने लिखना क्या है, क्योंकि जो लिखा जाएगा वही बोला भी जाएगा और वही पेश भी किया जाएगा, परफॉर्म भी किया जाएगा। तो लिखने की स्किल से ही स्टार्ट होता है मीडिया हमेशा, कहीं से भी आप ड्रामा में चले जाएं, फिल्म में चले जाएं, न्यूज़ इंडस्ट्री में चले जाएं, प्रोग्राम में भी चले जाएं, राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत अच्छा पे भी करती है और आपका नाम भी बनाती है। हम राइटर्स के, पोएट्स के नाम गिन सकते हैं कि कितने कितने फेमस लोग रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा, राइटिंग के अलावा, जब आपका हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, एक नॉर्मली जो सेकंड टीयर आपका कहलाता है, कि जो चीज़ें बनाने वाला, जो प्रोड्यूस करने वाला, वो डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्शन भी आपकी एक अहम है कि आप बहुत सारी चीज़ें ड्रामा के लिए, फिल्म के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, रेडियो के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो सारी की सारी फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्टर्स को, उनको टैलेंट में, उनको बजट्स में, उनको लोकेशंस में, उनको जितने भी रिसोर्सेज बैकग्राउंड में चाहिए होते हैं उसके लिए। तो प्रोड्यूसर्स एक बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है बैकग्राउंड में। देन आपकी जो स्किल सेट है वो आपका और ज़्यादा वसी हो जाता है, आपकी कैमरा की ऑपरेशंस आ जाते हैं कि आप किस तरह से जो स्क्रीन के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट करते हो, जो कि विजुअल लैंग्वेज है, वो कैमरा के थ्रू आप किस तरह से रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ठीक है। फिर कैमरा के साथ आपका ऑडियो आ जाती है कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स किस तरह से आप करते हो, और ऑडियो की एक बहुत बड़ी गेम है म्यूज़िक इंडस्ट्री, आपकी साउंड की, आपकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपकी स्किल सेट में ऑडियो की रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक की प्रोडक्शन आ जाती है बहुत बड़ी। देन आपकी जो प्रोडक्शंस हैं, डिज़ाइन, जो आपका क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव में आपका जितने भी सेट्स लगते हैं, जो कुछ भी डिज़ाइन बनता है, स्क्रीन के लेआउट्स बनते हैं, वो सारे के सारा उसमें आ जाता है कि आप डिज़ाइनिंग में या आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो एडिटिंग है, एडिटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और एक मेन स्किल है कि आपने जो भी ऑडियो वीडियो फोटोज हैं उनको आपने एडिट करना है, और तो एडिटिंग की एक स्किल भी बहुत अहम काउंट होती है। और आजकल अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का जिस तरह से दौर है और डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया में जो चीज़ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम काउंट होती है, अगर आप एक आपकी राइटिंग और दूसरी आपकी एडिटिंग, और ये वो दोनों ऐसी चीज़ें जो आप आराम से विदाउट एनी क्या कहते हैं कहीं पर जाए बगैर भी सिर्फ एक जगह पर बैठ के भी आप काम कर सकते हैं कि आप लिखें और जस्ट एडिट करें और आपकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाती है। यानी डिजिटल मीडिया ने एक किस्म का एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है
3: कि वो
4: एक बड़ी एक जो बड़ी प्रोडक्शन जो है जो कि जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा बजट लगता था उसको बहुत शॉर्ट कर दिया। तो ये वो स्किल्स हैं। फिर आपकी एनिमेशन हैं, आप एनिमेशन में कर सकते हैं, VFX में कर सकते हैं, डिजाइन में कर सकते हैं। देर आर सो मैनी बैकग्राउंड स्किल्स हैं जिनको आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं और बच्चों को उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्रीन जो है वो ऑडियो की स्क्रीन है या वीडियो की स्क्रीन है उसके लिए काम करते हैं तो सारी की सारी बैकग्राउंड पे जो काम वर्कर्स की वजह से कंपाइल हो पाती है। तो बहुत सारी स्किल्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं। जब हम टेक्निकल में जाते हैं और कैमरा में फर्ज किया हम जाते हैं तो कैमरा जस्ट लाइक हम कैमरा मैन को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा मैन के साथ जो कैमरा हैंडलर्स हैं वो भी होते हैं, जो डिफरेंट एसेसरीज होती हैं जो इनके यूजर्स होते हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, कि जो ऑडियो ऑपरेटर है, जो साउंड ऑपरेटर है, जो आपका जिप का ऑपरेटर है, जो आपका फोकस पुलर है, ठीक है, तो उसके साथ बहुत बड़ी स्किल सेट बनता है और वो हाईली पेड भी है। तो बच्चों की सोचना चाहिए कि अगर हम ऑन स्क्रीन नहीं कर रहे तो ऑन स्क्रीन के लिए कंटेंट बना रहे थे उसकी बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए बेशुमार एक लंबी लिस्ट है जिसपे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं और जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो जो टेक्निकल लोग हैं ना उसकी वर्कफोर्स की भी कमी है, अच्छा टेक्निकल जो वर्कफोर्स है उसकी भी कमी है, उसके लिए बाज का जैसे हमारी फिल्म्स बनती हैं मार्केट में और उसके लिए बहुत सारे लोग वो बाहर से हायर करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद पाकिस्तान में काम करने वाले लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं है, तो नई नई जितनी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है और उसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे लोग बाहर से हायर होते हैं।
3: सर आपने इतनी डिटेल में बताया ऑन सेट और ऑफ स्क्रीन काम करने का किस किस तरह से डिफरेंट है, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यूजुअली हमें यही पता होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर हॉस्ट या एंकर, लेकिन आपने जितना डिटेल बताया मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और मेरे सामाइन ने इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ میں ہوں مریم ارشاد، لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن، پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں پرنسپل لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن سر شاہد۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ آن اسکرین اور آف اسکرین کس کس طرح کے کیریئر اپرچونیٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹ اویل کر سکتے ہیں۔ سر آپ نے بات کی تھی کہ ایڈیٹنگ کی، کیمرہ ہینڈلنگ کی، کیمرہ آپریشنس کی، اور اس طرح سے بہت سارے کریٹو ڈیزائن جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سے اپنے آپ کو اور اپنے کیریئر کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہمارے لسنرس کو بتانا چاہیں گے کہ ہم کس طرح سے فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن میں اسٹوڈنٹس کو ویل ٹرین کر رہے ہیں ان سب ریگارڈس میں۔
2: اچھا مس پری، میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو یو سی پی ہے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے، اور اس کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا ون آف دی بیسٹ میڈیا اسکول ہے، جو کہ آپ کو ٹیکنیکل فیسلٹیز کے حوالے سے، فیکلٹی کے حوالے سے بیسٹ ہے، کہ یہاں پہ آپ کو جو اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ دیگر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ شاید اس ٹائپ کا ماحول بھی نہیں ہے اور اس ٹائپ کا اکوپمنٹ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھا جائے تو ہمارا جو یو سی پی کا میڈیا اسکول ہے، اس میں اپنا ریڈیو چینل ہے جس کو ہم ایف ایم 92 کہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ ریڈیو کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے جو کہ 24/7 جو ہے ہمارا چینل چل رہا ہوتا ہے ریڈیو کا، اور جس میں آپ آواز کو لے کے اور ڈفرینٹ جو ریڈیو کے پروگرامز ہیں اس کا اسکل سیٹ جو ہے سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پروڈکشن ہاؤس ہے، ٹی وی کا پروڈکشن ہاؤس ہے جو کہ نیوز کے حوالے سے تو ڈیزائن ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیٹ نیوز کا، پروگرام کا، اور کروما کے حوالے سے بھی یہاں پہ موجود ہے فیسلٹیز، اور لیٹسٹ کیمراز ہیں، اور جو دیگر اکوپمنٹ ہے جس میں لائٹنگ اور ساؤنڈ ہے وہ سارے سارا اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ٹی وی کا جو ہمارا پروڈکشن ہاؤس ہے، یہ نہ صرف لائیو پروگرامس بھی کر رہا ہوتا ہے بلکہ ریکارڈیڈ پروگرامس بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کلاسز کے علاوہ بھی یہ اویلیبل ہوتا ہے، اور یہاں پہ بچے اپنا اسکل سیٹ کو بڑھاتے ہیں، اور یہاں پہ پراپر پی سی آر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیب ہے جو کہ کمپیوٹر لیب ہے، وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ نیو لیبس ہیں، جہاں پہ لیٹسٹ کمپیوٹرز ہیں جو کہ نہ صرف گرافکس کے لیے بلکہ اینیمیشنس کے لیے اور ایڈیٹنگ کے لیے بھی سوٹیبل ہیں، اور آپ کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ کو بھی اور ڈیزائن کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اسکل سیٹ ہے، یہ وہ اکوپمنٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کو، میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ چاہے پی آر کا ہو، ایڈورٹائزنگ کا ہو، فلم کا ہو، ڈرامے کا ہو، یا جرنلزم کا ہو، تو کے لیے، سب کے لیے یہاں پہ پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ ہمیں سکھائی بھی جاتی ہیں، اور بچے اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کا اسکل سیٹ بڑھتا ہے، تو بچوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ صرف وہ سیکھ رہے ہیں، بہترین ہمارے پاس فیکلٹی ہے جو کہ نہ صرف پی آر میں، ایڈورٹائزنگ میں، فلم میں، ریڈیو میں کی اسپیشلائزڈ ہے، بلکہ وہ یہ اسکل سیٹ بچوں تک پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ بچے خود سے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھی بات یہ کہ ہمارا جو کنیکشن ہے انڈسٹری کے ساتھ بھی ہے اسکول کا، اور ہمارے بہت سارے بچے جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ ان کو ریفر بھی کرتی ہے، اور ان کو انٹرنشپ بھی دلوائی جاتی ہیں، اور پھر ریکروٹمنٹ کی ڈرائیوز بھی ہماری چل رہی ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز بھی ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ کی ایجنسیز بھی ہیں، وہ نیوز کے ٹی وی چینلز بھی ہیں، اور وہ ڈفرینٹ پروڈکشن ہاؤسز بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے نہ صرف اسکل سیٹ حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کو انڈسٹری میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں، اور نہ صرف وہ جاتے ہیں بلکہ وہ اسکل سیٹ سیکھتے بھی ہیں اور پھر مارکیٹ میں کام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بچے کافی سارے، ڈھیر سارے بچے ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا نام بھی بنا رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں۔
1: سر ابھی جیسے آپ بات کری تھی کہ ایڈیٹنگ کے پراپر ہمارے پاس سافٹ ویئرز بھی ہیں، اور ہمارے پاس بلڈ ان لیبس ہیں جس میں بہت اچھے سے ایڈیٹنگ سکھائی جاتی ہے، تو وہ کون سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو بہت ایزی ٹو یوز ہیں جو بگنرز بھی یوز کر سکتے ہیں؟
2: دیکھیں ایڈیٹنگ کے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جس میں، لائک اگر ہم آڈیو کی ایڈیٹنگ کی بات کریں تو ہمارے پاس آڈیشن ہوتا ہے، ساؤنڈ فورج وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی بات کی جائے تو اڈوب کا ہی پریمیئر جو ہے عام طور پہ اس کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا یوزیج زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہو، جس میں کہ گرافکس کی انٹر لنکڈ ہیں، جو ایڈیٹنگ ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، جس میں آپ کی امیج کی ایڈیٹنگ اور اینیمیشن کی ایڈیٹنگ اور ساؤنڈ کی ایڈیٹنگ ساری مرج اور مکس اینڈ مرج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اور بھی ہیں۔ اڈوب اینیمے ہیں جسے ہم اینیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینیمیشنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر 3D کے سافٹ ویئرس بھی ہیں، اینیمیشن کو ہم 3D के एनवायरनमेंट में करना चाहें, फिर डिज़ाइन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें यूआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर्स वो सारे जो मार्केट में इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो हमारे पास सिस्टम्स और लैब्स ऐसी हैं कि वो बच्चे उसको ना सिर्फ अच्छे तरीके से उस पर कर सकते हैं बल्कि वो वहाँ पे उस पर प्रोड्यूस भी ढेर चीज़ें कर रहे होते हैं।
1: और सर अगर हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास क्या हम वेल इक्विप्ड हैं और हम स्टूडेंट्स को ऑपरेट करना सिखाते हैं?
2: जी बिल्कुल, हम ऑपरेट करना भी सिखा रहे होते हैं। मैंने आपको भी बताया कि हमारा ना सिर्फ टीवी के जो प्रोडक्शन हो से वहाँ पे ऑडियो की प्रॉपर जो इसके माइक्स रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो प्रोफेशनल माइक्स हैं वो सारे किस्म के माइक्स अवेलेबल हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए हमारे नॉर्मल मित्र वायरलेस माइक्स भी होते हैं, बूम माइक्स भी होते हैं, केबल माइक्स भी होते हैं, वो सारे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास रेडियो की फैसिलिटी है कि रेडियो में भी जो आउंड है, जो साउंड है, जो और ज़्यादा अगर आपने ज़्यादा प्रोफेशनल वे में करनी हो तो रेडियो में हमारे पास वो साउंड का प्रॉपर इक्विपमेंट है। वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हो रही होती हैं और लाइव भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, तो साउंड के हवाले से भी यूसीपी में बेहतरीन फैसिलिटीज़ भी हैं और इक्विपमेंट भी है।
1: अच्छा सर, जब स्टूडेंट्स कैमरा या कोई भी अदर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने वाले होते हैं तो आप उनको क्या गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको फील्ड में लेके जाके कैसे यूज़ करना है? क्लास के अंदर आप, मैंने देखा है कि अक्सर मैं स्टूडेंट्स की पोस्ट और स्टोरीज देखती हूँ, वो वीडियोज़ लगा रहे होते हैं कि सर शाहिद की क्लास है और सर सिखा रहे हैं, तो कितना टेक्निकल हो जाता है और आप उसमें किस तरह से उन्हें गाइड कर रहे होते हैं?
2: देखिए टेक्निकल ज़रा कोई भी इक्विपमेंट है तो उसको एटलीस्ट उस इक्विपमेंट का ना होना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ना, और वो ना हो तभी आता है जब आपके इक्विपमेंट आपके हाथ में है और आप उसको ऑपरेट करना शुरू करें। सर ये बहुत नाजुक चीज़ें तो होती हैं, आपको बड़ी डेलिकेसी के साथ इन चीज़ों को इक्विपमेंट को यूज़ करना होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन एटलीस्ट सिर्फ इसकी डेलिकेसी पर नहीं जाना। जब तक आप किसी भी टेक्निकल चीज़ को, किसी भी इक्विपमेंट को पर्सनली खुद यूज़ ना कर सके आपको उसका आइडिया नहीं होता। तो डिफरेंट ब्रांड्स के आपके कैमराज, लाइट, साउंड की चीज़ें होती हैं, इनको इसकी डेलिकेसी को साइड पे रखें, इसको यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि आप इनको ऑपरेट करें, खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें। वो स्टूडेंट्स जो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद से करते हैं, खुद से इन इक्विपमेंट के साथ प्ले करते हैं और देखते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ज़्यादा लर्न कर पाते हैं। जस्ट ये देखना कि कोई और कर रहा है और ये इक्विपमेंट मौजूद है, उसके मौजूद होने से कुछ भी नहीं होगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को ज़्यादा हम चीज़ें बताते हैं, और बहुत सारे बच्चे जिनको शौक होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है कैमरा में, लाइट में, साउंड में, वो ना सिर्फ क्लास में भी उसको उन चीज़ों को, इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, बल्कि क्लास के बाद भी उनको एक्सरसाइज करते हैं।
1: और सर आप हर स्टूडेंट को उसको प्रैक्टिकली करना सिखा रहे होते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश तो ये होती है हम सब स्टूडेंट्स को वो चीज़ें करवाएं प्रैक्टिकल, क्योंकि है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बगैर जो मीडिया की स्पेशल विजुअल स्क्रीन की जो ट्रेनिंग है वो नामुकम्मल रहती है।
1: और सर हमारे सुनने वालों को, स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि जब वो कैमरा हैंडलिंग या लाइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करें तो वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको उन्हें फॉलो करनी?
2: देखिए मार्केट में क्या काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी चीज़ विजुअल क्रिएट कर रहे हो कैमरा के थ्रू, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपने क्या लाइट करनी है और किस किस्म का फ्रेम बनाना है। उसके लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो हमारी स्क्रीन की जो गाइडलाइंस हैं, जो उसकी ग्राइमर है स्क्रीन के लिए, वो क्या है। अगर वो आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे, सिर्फ कैमरा को ऑन करना ज़रूरी नहीं है हर, क्योंकि आजकल हर शख्स से कैमरा का यूज़र है, आपके मोबाइल ने आपको इतना फैसिलिटेट कर दिया कि आप कैमरा को यूज़ कर सकें, और उसमें भी जिस वो लोग जो कि एजुकेटेड तो नहीं होते लेकिन एस्थेटिकली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अच्छा विजुअल क्रिएट कर पाते हैं। तो स्टडी में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि इक्विपमेंट का स्किल सेट तो हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको एस्थेटिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन सा विजुअल क्रिएट कर रहे हो और कैसा क्रिएट कर रहे हो और उसको आप आल्टर कैसे कर सकते हो, उसमें आप तब्दीली क्या ला सकते हो, और ख़ुद से विद इन फ्रेम किस किस्म के सब्जेक्ट को आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हो, ये बड़ा अहम है कि उस फ्रेम में उस कैमरा के जरिए आप लोगों को दिखा क्या रहे हो। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा एजुकेशन के साथ भी और आपके अपने एस्थेटिक्स के साथ भी, आप किस तरह से एस्थेटिकली चीज़ों को, रंगों को और प्रेजेंट करते हैं लोगों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें कि स्क्रीन पे क्या और कैसे दिखाएं।
1: सर लाइटिंग के बारे में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे?
2: देखिए लाइटिंग आमतौर पर तो नॉर्मल नेचुरल लाइट का बड़ा ट्रेंड है, रियलिटी बेस्ड लाइटिंग होती है कि हम रियल में जो जैसा नज़र आ रहा होता है वैसा भी प्रेजेंट करें, लेकिन बाज़ का टीवी की और फिल्म की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को पहले से बेहतर करके दिखाना चाह रहे होते हैं। तो लाइटिंग को समझना कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी लाइट के कलर्स क्या हैं और कोई ख़ास कलर कोई क्या मूड क्रिएट कर सकता है, और कोशिश होती है कि आप नेचुरल रहते हुए लाइटिंग को करें, लेकिन लाइटिंग बहुत वसी है, आपका विजुअल लाइट से ही क्रिएट होता है। और कैमरा की जब हम टेक्निक्स को बता रहे होते हैं उसमें हमारा मेनली फोकस ना सिर्फ कैमरा के टूल्स पे तो होता है, वो बेसिक होता है, लेकिन लाइटिंग पे ज़्यादा होता है कि लाइटिंग से आपने किस तरह से डिफरेंट मूड्स एंड एनवायरमेंट्स कैसे क्रिएट करने, तो लाइटिंग को आप मोस्ट फोकस किया जाता है ड्रामा में भी और फिल्म में भी।
1: और सर बिल्कुल एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जब वो ये फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं वो किस अप्रोच के साथ ज्वाइन करें और मीडिया फील्ड में आने के बाद वो किस किस प्रॉब्लम को किस किस तरह से साइड पे रख के अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हैं।
2: देखिए स्टूडेंट जो मीडिया की एजुकेशन हासिल कर रहा है उसको बड़ा फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि वो मीडिया की इंडस्ट्री में क्या करना चाह रहा है, वो डायरेक्शन करना चाह रहा है, वो ऑन स्क्रीन काम करना चाह रहा है, वो बैक स्क्रीन काम करना चाह रहा है, वो एडिटिंग करना चाह रहा है। अगर उसका गोल सेट होगा तो उसे ये पता होगा कि मैंने क्या करना है। और बाकी क्योंकि सारी चीज़ें सिखाई तो जा रही होती हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे स्किल सेट को हासिल करते हैं, वो साउंड को, विजुअल को, एडिटिंग को, स्क्रिप्ट को, सबको सीखते हैं और उसको एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने गोल ओरिएंटेड नहीं होते। जब आपका बस आपको कोशिश होती है कि अपना स्किल सेट कायम करें, आपको एक स्किल हासिल करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें, आपको एक दो तीन स्किल्स आनी चाहिए। और अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो फिर आपका स्किल सेट और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल टारगेटेड होना है। आपके पास 4 साल होते हैं, आप हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में से आपने चूज़ करना है कि आपकी नीश क्या है, कि आपको क्या पसंद है, और जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से काम करें। अगर आपने ऑन स्क्रीन काम करना है तो फिर अपनी आवाज़ को बेहतर करें, रेडियो को भी ज्वाइन करें, आप एक्टिंग के लिए थिएटर को भी करें और ऑन स्क्रीन के लिए आप काम भी करें। डिजिटल बहुत बड़ा मीडियम है, ठीक है? तो अगर ऑन स्क्रीन है तो फिर ऑन स्क्रीन के तकाजों को पूरा करें आप, क्योंकि आवाज़ और विजुअल दोनों ही चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। और अगर बैक स्क्रीन पे हैं तो फिर आप पूरी डायरेक्शन को उसकी समझें, स्क्रिप्ट को भी समझें, एक्टर्स को भी समझें, एडिटिंग को भी समझें, साउंड को भी समझें, म्यूजिक को भी समझें और उसको प्रैक्टिस करें। और देखो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। फिल्म के स्टूडेंट्स की एक वो नाकामी की एक वजह ये भी थी कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ बनी हुई हम देख रहे हैं वो आसानी से बन जाएगी, तो ऐसा नहीं। हर चीज़ को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। खाना भी बनाना हो तो वो सारे इन्ग्रीडियंट्स इकट्ठे करके आपको टाइम देना पड़ता है, तो स्क्रीन के लिए काम करने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। और ये यूनिवर्सिटीज़ होती इसलिए कि आपको ना सिर्फ सिखाया जाता है बल्कि आपके पास गलती का चांस होता है। जब आप काम करोगे तो आप कुछ ना कुछ गलती भी करोगे और वो गलती आपके सीखने के लिए होती है। वंस यू आर इन ए मार्केट तो फिर आपके लिए मसला होगा कि वहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वहाँ पर अगर आपको कोई काम करना होगा तो फिर आपको प्रॉपर और परफेक्ट करना होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज करें। आप गलती अगर करते हैं तो गलती सीखने के लिए होती है, आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी बेहतरी आएगी और आपका निखार आएगा।
1: थैंक यू सो मच सर शाहिद, आप साथ सीखने को बहुत कुछ मिला, आपने एकेडमिया और इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से मुझे और मेरे सुनने वालों को गाइड किया। इसी के साथ हम करते हैं अपने फैकल्टी प्रोग्राम का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक बेहतरीन गेस्ट के साथ मजीद फिर आएंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आपके साथ।

0: are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। हमारे साथ डॉक्टर खालिद जहीर हैं और एक दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ी सी बात चल पड़ी तसव्वुफ की तरफ और कुरान की तरफ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब, कम से कम मेरी निगाह में तो बहुत ज्यादा है। और मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा हूँ, आपके साथ मुझे मौका मिला गुफ्तगू करने का। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले के खवास हैं, और आपने फरमाया वो कहते हैं जी हाँ जी पहले आप पाक हों, वुजू करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे, तो पहले आप पाक हों फिर हम आपको समझाएंगे। और अभी हमने डिस्कस की आयत के, अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम तदब्बर क्यों नहीं कर, तदब्बर होता है जिस तरह डीप थिंकिंग से, क्यों नहीं कुरान अप्रोच करते, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले। डॉक्टर साहब, सूरह मुल्क की एक बड़ी मशहूर आयत, हम सब सूरह मुल्क पढ़ते हैं लेकिन बहरहाल तर्जमा के बगैर शायद पढ़ते हैं, उसकी गालबन 10th आयत है, जिसमें वो लोग जो दोजख के किनारे खड़े होंगे डॉक्टर साहब, यानी कि वो दोजख में जाने वाले, तो फरिश्ते एक सवाल करेंगे, बड़ा अच्छा अल्लाह ने एक नक्शा खींचा है, वो फरिश्ते कहेंगे आपके पास कोई आए नहीं, कोई खबरदार करने वाला कोई इस तरह, तो वो एतराफ करेंगे कि जी आया था लेकिन हमने नहीं माना, और साथ कहेंगे कि अगर हम सुनते और अकल यूज करते, सबसे बड़ी बात है अकल यूज करते, आज हम असाबे सईर, हम दोजख वालों में ना होते। तो अगली आयत में कि इस तरह वो अपने गुनाह का एतराफ़ करेंगे। और मैं जब कुरान देखता हूँ, मुझे इजाजत दे डॉक्टर साहब, जगह जगह पर अल्लाह कहता है यार अकल वालों के लिए निशानी है, देखने वालों के लिए, यानी मेरी आंख भी देख रही है और एक, यानी एक बंदर की आंख भी देख रही है, लेकिन एक फर्क है बसीरत की आंख। तो वो कह रहे हैं कि जी खास ही लोग उसको समझेंगे बताएंगे, ये तो बड़ा तजाद है डॉक्टर साहब।
1: आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और इसमें एक और पहलू बयान किया जा सकता है कि फर्ज कीजिए कि एक साहब हैं जो किसी के मुर्शिद हैं, किसी के रिलीजियस गाइड हैं, वो उनको बकौल इस नुक्ते नज़र के उनका तज़किया कर रहे हैं। तो अगर ये अपनी इस सारे प्रोसेस में अनकंडीशनली सरेंडर किए हुए हैं और अकल को मुअत्तल किए हुए, तो फिर क्या ये जो सूरह अनफाल है, सूरह नंबर 8, उसकी आयत नंबर 22 है, इन्ना शर्रत दवाब बिइंदल्लाह, बदतरीन हैवान अल्लाह के नजदीक, अस्सुमुल बुकमुल लजीना ला याकिलून, वो बहरे और गूंगे इंसान हैं कि जो अकल से काम नहीं लेते, तो क्या करेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि कोशिश तो ये हो रही है ना कि कुरान में दाखिल होने से पहले ही पहरा खड़ा कर दिया जाए, ये आप बात मुझसे करेंगे, मैं आपसे करूंगा तो हमें समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये बात किसी ऐसे फर्द से करेंगे जो इस बात को मानकर अपने अंदर दाखिल कर चुका है, जिसको अंग्रेजी में इंटरनलाइज कहते हैं, वो तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक नौजवान गए अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए, तो उनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो इंजीनियर बने, को डॉक्टर बने वगैरह वगैरह, वो तो बन गए, लेकिन साथ ही वो खास किस्म का मजहबी रुझान लेके वापस आए, जिस पर के वालिद साहब कुछ परेशान हुए कि ये कुछ ज्यादा शिद्दत पसंदी की तरफ माइल है। तो उन्होंने उनको एक आलिम दीन से मिलवाया कि वो उनके अंदर कुछ अक्ल फहम पैदा करें। तो वो आलिम उनसे बात करते रहे कोई आधे घंटे तक, और वो सर नीचे करके लगता था कि सुन रहे थे। वालिद साहब बहुत खुश थे कि अब उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी। तो जब वो जा रहे थे वापस, तो उन्होंने पूछा कि बेटे आपको कोई बात समझ में आई है? उनका नहीं, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। यानी मतलब ये कि वो जो बात कर रहे थे उनको मैंने इग्नोर किया और मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। तो ये उनका रवैया होता है, वो आपकी बात नहीं सुनते। और कुरान क्या कह रहा है, लव कुन्ना नस्मऊ व नाकिलू, अगर हम सुनते या अकल से काम लेते तो हम आग वालों में से ना होते। मगर इसका एक और बड़ा दिलचस्प जवाब वो देते हैं, मालूम है क्या? वो कहते हैं ठीक है, आपने अकल को इस्तेमाल किया और आपने सुना, आप जहन्नुम की आग से बच जाएंगे, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि आपका तज़किया ना हो।
0: ये तो कोई,
1: मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। वो ये कहते हैं जी कि तज़किये के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, बात सही है, ये कुरान कहता है। यानी कद अफलाहा मन तज़क्का, फलाह पा गया वो जिसने तज़किया कर लिया, कद अफला फलाह पा गया मन तज़क्का मन ज़क्काहा, जिसने उसको पाक कर लिया, वक़्त ख़ाबा मन दस्सा, और बर्बाद हो गया वो जिसने उसको आलूदा कर लिया। तो ये तो ठीक है, लेकिन वो उसके लिए जो शर्त आयद करते हैं वो ये है कि आपको उस प्रोसेस से, सिलसिले से गुजरना पड़ेगा तरीकत के, जिसके बगैर आपका तज़किया हो ही नहीं सकता।
0: डॉक्टर साहब, मैं इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें दीन का मामला है ना, اور دین کا معاملہ سے مراد ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہم سے ہے، یعنی ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ یو سی پی کی پالیسیز دیں گے، اٹ شوڈ بی کلیئر کٹ اینڈ دی اسٹوڈنٹس مسٹ ریئلائز مسٹ نو کہ آپ اگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی نا؟
1: بالکل ایسے.
0: تو ڈاکٹر صاحب جو تزکیہ آپ فرما رہے ہیں تصوف ریلیٹڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن بھی ایک ڈیفینیشن تزکیہ کی خود دیتا ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی وہ جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتنی دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ ابھی دیکھیں نا، میں آپ جو آیت پیش کروں گا ترجمہ، مطلب اس میں کیا مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر سے امی رسول اٹھایا جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، دیکھیں پورا پیکج آ گیا، نبی اٹھایا جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، کس طرح الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیکھے، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، تزکیہ تو الکتاب اور الحکمہ کے ذریعے ملے گا، جو اس کا قانون اور اس کی وزڈم وچ از دی قرآن اٹ سیلف، آپ اس کے آؤٹ سائڈ سے بھی تزکیہ کہاں سے پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟
1: وہ آپ کے اس ترجمے کو نہیں مانیں گے،
0: ٹھیک ہے،
1: اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزکیہ کیسے ہوگا الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم سے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ تو آیت میں بیان نہیں ہوا. سو یو نو وہ بحث کریں گے.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: हम उड़ना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: सूफी सिंह ज़हू, दैट विच इज, दैट विच वॉज, दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम फैकल्टी आवर में मैं आपके साथ मौजूद हूँ सबा अवान, और आज फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से हम ये प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद आमिर कामरान साहब। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ लॉ, और वो एट द सेम टाइम जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ में जो है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज हमने उनको इस प्रोग्राम में दावत दी है ताकि वो हमें आके बता सकें कि यूसीपी में फैकल्टी ऑफ लॉ किस तरह से काम कर रही है, क्या कितने प्रोग्राम्स हैं जो वो ऑफर किए जा रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो फैकल्टी ऑफ लॉ में करवाई जाती हैं, और स्पेसिफिकली और स्पेशली जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है फैकल्टी ऑफ लॉ की जो कि उसको डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम अदर फैकल्टीज, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर।
6: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक
5: मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं खैरियत से?
6: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
5: सर पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो आप आए हैं। सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को अपना तारुफ करवाएं।
6: सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इधर। मेरा नाम असल में आपने बता चुके हैं मोहम्मद आमिर कामरान है, और मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में 2 साल से हूँ एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे पहले मैं डिफरेंट जो कॉलेजेस थे यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें पढ़ाता रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एज अ कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर दोनों तरह काम कर रहा हूँ।
5: जी ठीक है सर, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो कोऑर्डिनेशन है और फिर प्रोग्राम भी, और एग्जामिनेशन के कोऑर्डिनेशन अगर आपके पास इकट्ठी हो तो इसका मतलब है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो बड़ी अच्छी होंगी। सर मैं आपसे सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं।
6: फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर इस वक्त 2 तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, एक अंडर ग्रेड्स के लिए चल रहा है और एक पोस्ट ग्रेड्स के लिए चल रहा है। अंडर ग्रेड्स में हमारा LLB प्रोग्राम है जो कि 5 साल प्रोग्राम है, और इसमें 10 सेमेस्टर्स हैं। हमारे इधर सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम नहीं है। बेशक हम इसमें एनुअल इनटेक करते हैं लेकिन हमारा है ये सेमेस्टर सिस्टम, और ये 10 सेमेस्टर होते हैं जो कि फॉल और स्प्रिंग इस पे चलता है, और ओकेजनली अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम समर सेमेस्टर भी ऑन करते हैं, और अगर कमज़ोर जो तलबा रह जाते हैं उनको उसमें कवर किया जाता है। और इसी तरह हमारा LLM का प्रोग्राम है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है।
5: ठीक है ठीक है, ये तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बात है कि आपका LLM का प्रोग्राम भी जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। सर हमारे सुनने वालों की थोड़ा सी क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे जो एडमिशन्स हैं वो एनुअल बेस पे होते हैं, तो आप काइंडली हमें बताइएगा वो लोग जो कि एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में, वो कब एडमिशन्स ओपन होते हैं, और एनुअली एडमिशन्स हैं तो मुझे बताइएगा कि आपकी इनटेक कितनी होती है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
6: जी मैं बताता हूँ आपको, इसमें हमारा क्योंकि एनुअल सिस्टम है और ये फॉल से स्टार्ट होता है। फॉल से मुराद ये है कि जो सेप्टेम्बर से ऑनवर्ड ये हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए एड हम पहले ही दे देते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एक पूरे प्रोसीजर के साथ चलती है, तो उसमें हमारी UCP की जो वेबसाइट है उस पर ऐड आ जाता है, वहीं से बच्चे वहां पे अपने अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनका एक इंटरव्यू और एक टेस्ट होगा जिसकी वजह से वो को क्वालिफाई कर देंगे। इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि लॉ के एडमिशन के लिए ये क्योंकि 5 साला डिग्री है, इसलिए FSC, FA, ICS और इस तरह के दीगर लेवल्स हैं, उसके साथ साथ आपको लैट का एक पेपर भी पास करना पड़ता है और उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट 50% है। 100 नंबर का ये पेपर होता है, ये HEC के अंडर होता है और HEC के लिए साल में 2 से 3 मरतबा ये ऐड देती है। उसमें आप जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक नॉमिनल सी फीस होती है, उसको पे करने के बाद आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद 50 नंबर अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। और UCP आपका अदारा एक ऐसा अदारा है जो आपको हर दफ़ा वेलकम करता है। हमारे पास इस वक्त अगर आपने सीटों की बात की है तो हमारे पास पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ने हमें 100 सीट से रखा हुआ है। कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास भी इतनी ही सीटें मौजूद होती हैं। हमारे पास जैसे 100 सीट्स हैं ये फॉल और स्प्रिंग में, हम स्प्रिंग में इनटेक नहीं लेते, हम सिर्फ फॉल में ही इनटेक लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ UCP की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा इनटेक होता है, इसलिए हम इस बच्चों को प्रेफर करते हैं कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वो उसमें अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं।
5: ठीक है। और सर आपने जिस तरह से अभी लैट के टेस्ट की बात की तो मैं चाहूँगी कि बताती जाऊँ कि ये जो लैट का टेस्ट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का जो अपना एडमिशन टेस्ट है उससे टोटली डिफरेंट है। ये उन्होंने HEC के तहत ही रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और वहीं पे इन्होंने अपेयर होना होता है, जिस तरह से MD CAT या E CAT का टेस्ट होते हैं।
6: बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का अपना भी एक टेस्ट होता है जो लैट के बाद और उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद आता है। ये लैट का इंडिपेंडेंट टेस्ट है, जिस तरह आपने कहा कि MD CAT की तरह है या E CAT की तरह है या SAT की तरह है, उसी तरह ही है और ये HEC लेती है।
5: और सर ये सिर्फ अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसके लिए लैट रिक्वायर्ड होता है, LLM प्रोग्राम के लिए या इसमें उसकी कोई
6: जी अभी तक LLM प्रोग्राम के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनल एक टेस्ट जिसको यूनिवर्सिटी इनटेक करती है कि मेक श्योर करे कि वो स्टूडेंट हमारे मेयार के मुताबिक है या नहीं।
5: सर आपने LLB के लिए तो हमें बता दिया कि लैट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है और LLM के लिए ऐसे इस तरह की कोई लैट जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्ट की, लेकिन आप मुझे काइंडली बताइएगा कि यहाँ पर LLM के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है।
6: असल में LLM हमारा फर्स्ट टाइम अभी लॉन्च हुआ है। अब इसमें हमारे लिए जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हमें 20 सीट्स अवेलेबल हुई हैं और इसका अभी इनटेक फॉल में ही आया है और होपफुली इंशाल्लाह ताला हमें स्प्रिंग में भी इसकी इजाज़त शायद मिल जाए। इसमें ऐसा है कि इसके लिए हमें लैट के टेस्ट की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये इंटरव्यू बेस है। अगर आपका क्राइटेरिया 50% मार्क्स से ऊपर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आकर आप इंटरव्यू कर सकते हैं। हमारा एक पैनल बनता है और पैनल में आप अपीयर होकर अगर आपको कामयाबी हो जाती है तो आपका एडमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप अपना LLM कंप्लीट कर सकते हैं।
5: थैंक यू सो मच सर, आपने मोर डिटेल में हमें सुनने वालों को बता दिया कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से FOL में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और उनका एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसीजर जो है वो क्या है। अब मैं चाहूंगी कि काइंडली आप थोड़ा सा फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में हमें बताइए कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो किस तरह से काम कर रही है और ये जो प्रोग्राम्स हैं इसमें किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो ऑफर की जाती हैं और कैसे फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉ कॉलेजेस।
6: जी सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये ज़रूर इसमें डिस्टिंग्विश क्रिएट करूँगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ कॉलेजेस इधर जो अवेलेबल हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर या उसके साथ अफिलिएटेड हैं, इसलिए मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करूँगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो UCP की है उसमें डिस्टिंग्विश कैसे है। वो इस तरह इसको मैं बयान करूँगा कि जो हमारे इधर जो एजुकेशन दी जा रही है उसका जो मेथड है वो एक्सपीरियंशियल है, क्लिनिकल है। हम बच्चों पर जो फोकस करते हैं वो एक्सपेरिमेंट जिसको आप एक्सपीरियंशियल कहते हैं उनको हम इंगेज करते हैं, क्लासेस के अंदर इंटरेक्शन रखते हैं ताकि बच्चा फुली इंगेज हो जाए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ। हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसको भी रखते हैं जिनमें हम फर्दर मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने रखे हुए हैं, जिनमें हमारे पास लॉ क्लिनिक भी अवेलेबल है जहां पर बच्चे प्रोबोनो सर्विसेज में आकर खुद से पार्टिसिपेट करते हैं और एक्चुअल कोर्ट के अंदर जाकर अपीयर होते हैं। इसी तरह हमारे पास लेजिस्लेटिव थिएटर है जिसमें हम कोई ना कोई ऐसा एक अहम मौजू उसके ऊपर पूरा थिएटर करते हैं और अपनी आवाज़ को जो हुकूमत है उससे जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हुकूमत की उस तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लीगल हेल्थ कैंप है जिसमें हम प्रोबोनो सर्विसेज देते हैं। मुख्तलिफ जितने भी हमारे सीनियर लॉयर्स हैं उनको हम फर्म से बुलाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, और वहाँ पर हम एक उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ अरेंज करके प्रोबोनो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को, जो एम्प्लॉज़ हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, तलबा हैं और तमाम लोग जो इसके साथ मुंसलिक हैं उनको हम प्रोबोनो सर्विसेज देते हैं और उनका ऑन स्पॉट उनको मशावरत भी करते हैं। जो हमारे पैनल पे मौजूद लोग आते हैं जो डिफरेंट हमारे पास फर्म से आते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इंडोर जो मेन हमारा, क्योंकि हमारा लीगल सर्विस को प्रोवाइड करना है तो हमारा लॉ मूट इस वक्त बिलाशुबा बहुत एक उम्दा लॉ मूट है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जिनमें हमारा मॉक ट्रायल होता है या मूटिंग के प्रोग्राम हैं, या अभी रिसेंटली जिस तरह हमारे LLM के अंदर हमने मूटिंग प्रोग्राम किया जिसमें डिफरेंट जजेस, प्रेजेंट जजेस, करंटली जो इस वक्त इन सर्विस हैं वो भी आते हैं, और जो रिटायर्ड जजेस हैं वो आकर यहाँ पर इनकी प्रेजाइडिंग करते हैं। तो इस तरह हमारा ये एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को, जो तलबा हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, ताकि उनको जब वो कोर्स के अंदर जाएं तो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए।
5: बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरह से हमारी डिग्री जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है और इन स्टूडेंट्स ने और 2-3 साल 5 साल के बाद जो है वो प्रैक्टिस में जाके इन्होंने इन्हीं चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस करना होता है। तो अगर अपनी एजुकेशनल करियर के दौरान वो इस तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों का, तो उनके लिए वो जो है वो यकीनन उनकी प्रैक्टिस में जाके बहुत हेल्पफुल होगी। और जहाँ तक आपने लॉ क्लिनिक की और लेजिस्लेटिव थिएटर की और कम्युनिटी सर्विस की बात की है, तो वो मुझे लगता है आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी जो मॉरल्स हैं, जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो कम्युनिटी सर्विस है उस पर भी उनको जो है वो मोटिवेट भी करना चाहिए। सर काइंडली आप ये भी हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिएगा कि ये जो आपने हमें अभी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसमें आपने लॉ क्लिनिक और लीगल हेल्थ कैंप और लेजिस्लेटिव थिएटर बताया, क्या ये फैकल्टी ऑफ लॉ खुद से ऑर्गेनाइज कर रही होती है, स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, फैकल्टी मेम्बर्स इसमें होते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा होता है?
6: जी मैं यार इसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। माशाल्लाह हमारी जो डीन साहिबा हैं उन्होंने एक पूरा एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साथ ये अटैच भी है। इसको अंदर हमारी एक लॉ सोसाइटी बनी हुई है जो इसको बखूबी इसको अरेंज करती है और उसको वाचनवाड भी करती है और मैडम डीन के अंडर सुपरविजन ही होता है। इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इन जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हमने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी रखी होती हैं, जिनके अंदर सबसे पहले मैं कहूँगा तो इसमें हमारा असाइनमेंट क्या होता है, क्विजेज होते हैं, तो ये सारे ही सारे एक्सपीरियंशियल बेस, प्रोपोजिशनल बेस, इनमें एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी फोकस करते हैं कि उनका जितना भी ये एफर्ट है, ये असाइनमेंट हैं, ये क्विजेज हैं, ये सारी की सारी एक्सपीरियंशियल हों ताकि वो कोर्स के अंदर उनको उसका फ़ायदा हो सके। तो इस वजह से और लॉ सोसाइटी इन तमाम चीज़ों को जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं उनको वॉच एंड वार्ड करती है और बड़े अच्छा तरीके से वो सर अंजाम दे रही है।
5: और लॉ सोसाइटी जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने?
6: जी बिल्कुल लॉ सोसाइटी के ही हैं, इनके लिए भी अलग से पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, इनके लिए भी इसी तरह एप्लीकेशन आती हैं, जो ही एक सेमेस्टर ऑन होता है एप्लीकेशन आई जाती हैं, और एप्लीकेशन के बाद इनका प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी या इस तरह के दीगर हरारकी जो है वो चुनी जाती है, और फिर ये एक स्मूथ तरीके के साथ हरारकी के तहत इसको रन करती है।
5: अभी वक्त आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा फिर से ज्वाइन करते हैं।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान सबावान और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है फैकल्टी आवर में फैकल्टी ऑफ लॉ। हमारे साथ मौजूद हैं सर आमिर कामरान। ब्रेक पे जाने से पहले सर आमिर हमें बता रहे थे कि किस तरह से फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन नीड्स के साथ साथ उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं उन पे भी काम करती है। अब मैं चाहूंगी सर कि आप हमारे सुनने वालों के साथ जो फैकल्टी ऑफ लॉ का एक इनिशिएटिव था जो कि अभी पूरी फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर जो है इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है विच इज मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो उसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि वो प्रोग्राम है क्या और वो उसका पर्पस क्या था और वो उसके आउटपुट्स जो हैं वो क्या मिले हमें।
2: जी बहुत शुक्रिया। सामीन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इधर यूसीपी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर एफएल ने एक इनिशिएट लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि हमने एक मेंटोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो मेंटोरिंग प्रोग्राम ऐसा है कि जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है और फिर हमने इसको एक दो साल के अंदर और इन्हांस करके तमाम की तमाम सेमेस्टर के अंदर इसको लगा दिया गया। अब इसके अंदर ऐसा है कि जो बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हमारे इनटेक करके आते हैं फॉल के अंदर तो उनको तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एक वाइड रेंज यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर तमाम पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको लाहौर में और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है इनिशिएट स्टेज के ऊपर। प्रॉब्लम्स के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनको रिहाइश का मसला आता है, इनको यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो इनको लैंग्वेज का बड़ा इशू आ जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आते हुए इनको सेमेस्टर सिस्टम की समझ नहीं आती कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, किस तरह चलाना है, किस तरह वर्क करता है, ये इसमें किस तरह करेंगे। फिर इसके बाद क्योंकि ये रिमोट एरिया से भी लोग आए होते हैं तो यहाँ पर आकर इनको नए तरीके नए जिद्दत जो हमारे इधर यूसीपी हमें प्रोवाइड कर रही है उसके साथ आशनाई करवाना वो भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे इधर बन जाता है। तो उसके लिए फिर एफओएल ने ये मेंटोरिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसको इनिशिएट किया है जिसके अंदर जो सीनियर हैं यहाँ पर उनको एक हायरार्की के तहत बनाया जाता है। वो हायरार्की इस तरह है कि हमने जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेंटीज़ का नाम दिया है जो कि जिनके ऊपर वर्क किया जाता है और फिर उनको मेंटोर करते हैं उनके सीनियर्स। फिर मेंटोर्स के ऊपर हमने एक फैकल्टी जो टीचर हैं उनको हमने एज अ सुपरवाइज़र वो लगाया हुआ है और फिर वो डायरेक्ट जवाबदेह होते हैं मैडम डीन को जो हमारे इधर। और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। इसका कुछ तरीक़ेकार इस तरह हमने इसको मॉनिटर भी किया हुआ है कि हमने इन बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं, ग्रुप्स को हमने एक लीडर दिया हुआ है जो एक मेंटोर की तौर पर काम करता है और वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड अपने सुपरवाइज़र से शेयर करता है और फिर इसकी जो मंथली मीटिंग जो सुपरवाइज़र है वो अपने डीन साहब के साथ जाके करते। इस तरह ये पूरे का पूरा प्रोग्राम एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है ताकि किसी किस्म की भी जो प्रॉब्लम इस बच्चे को आ रही है जो न्यू कमर है यूसीपी के अंदर और वो उसको किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है।
1: बहुत ही अच्छी बात है और सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो कितनी कंसर्न है अपने स्टूडेंट्स के बारे में और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। ऑब्वियसली एनुअल सिस्टम से आए होते हैं हम लोग, डिफरेंट एरिया से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए इनिशियली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको केटर करना और जिनको जो है वो टाइमली एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम श्योर कि ये जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है ये आपकी फैकल्टी की एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही हाईलाइटेड जो है वो फीचर है। सर आपने थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ जो है वो इंगेज रहते हैं और स्टूडेंट्स को भी डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट मॉक कॉम्पिटिशन जो है उसमें मोटिवेट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों के साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोई कोर्ट विजिट करवाए जाते हैं या फिर उसका क्या तरीकाकार है, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कोर्ट्स में जाकर ही प्रैक्टिस करनी है, तो क्या उनके साथ जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ भी आप लोग जो है वो उनमें स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज करते हैं?
2: जी ये बहुत अच्छा है। मैं इसमें भी बताता हूँ आपको कि हमारा जब इनिशियल बच्चा यूसीपी में एंटर होता है तो प्रोरेक्टर साहब ने इसको एक कनेक्ट वीक के हवाले से हमें एक टास्क दिया था, तो कनेक्ट वीक के हवाले से ओरिएंटेशन कम कनेक्ट वीक उसके अंदर हमने इनिशियल स्टेजेस पे ही जो हमारा न्यू कमर था न्यू स्टूडेंट था उसको हमने कोर्ट में विज़िट करवा दिया। इसके लिए हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म बनाने के बाद हमने यूसीपी से जो बसेस थे यूसीपी ने दी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें बच्चों से कोई चीज़ भी नहीं ली गई। उनको हम लेकर गए कोर्ट्स के अंदर, उनको दोनों अदालतें जो सेशन कोर्ट थी या सिविल कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, इनको अदालतों को दिखाकर उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे जो सीनियर टीचर्स थे वो साथ गए थे, उन्होंने इनको प्रोवाइड की, और प्रोवाइड करने के बाद उनको वापस यूसीपी में जो वापस उनको ड्रॉप कर दिया गया। आई थिंक कि वो जो इनका ये सेशन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये शुरू से ही, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारा ये एक्सपीरियंशियल है, तो हम पहले दिन से ही बच्चे को जिस जगह पे उसने जाकर वर्क करना है उसके ऊपर जाकर उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो वहीं से ही स्टार्ट ले, तो उसके लिए कोर्ट विजिट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि हमारे तमाम जो सेमेस्टर बकिया हैं उनमें भी जो दीगर टीचर हजरात हैं, साज़ा कराम हैं, या हमारे जो फाइलों का है, या हमारे दीगर जो लॉ सोसाइटी के अंदर, वो भी ये जो विज़िट करवाते हैं जिनमें हाई कोर्ट का विज़िट है, या दीगर जो दूसरे अदारे हैं जिनमें आईपीओ है या कोई और इस तरह के अदारे जो गवर्नमेंट बेस हैं, वहाँ पर वो लेकर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंशियल बेस इनिशिएटिव होता है।
1: बहुत अच्छी बात है सर, और इस चीज़ जो है वो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट भी करती होगी, और उनके लिए जो है वो एक सोर्स ऑफ जो है वो इंस्पिरेशन भी होगा। सर आप मुझे फाइलों का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताइएगा कि ये फाइलों क्या है और इसका क्या काम होता है फैकल्टी ऑफ लॉ में।
2: यहाँ पर जो हमारे इधर एक अदारा फाइलों के नाम से हमने रखा हुआ है, उसको मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इधर मैडम शाइस्ता अनवर, वो इसको वाच एंड वार्ड करती हैं और होल्ड करती हैं। वो इसके अंदर जब सेमेस्टर 10 जब हमारा बच्चा यहाँ से पास आउट होता है, तो उस वक्त हम उसके लिए जो प्लेसमेंट है जिसको हम इंडस्ट्री प्लेसमेंट कहते हैं, कि वो डिफरेंट जितने भी फर्म्स हैं या जहाँ पर वो कोई ऑफिसेज हैं या किसी जगह पर इंडस्ट्री है, वहाँ पर उनको प्लेस करवाना भी यूसीपी की ज़िम्मेदारी होती है। वो इसलिए ज़िम्मेदारी लेती है कि यूसीपी हर स्टूडेंट को अपना बच्चा समझते हुए उसको पूरी की पूरी तरह उसको कैटर करते हुए उसको अकोमोडेट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, और फिर वो उसको किसी न किसी जगह पर वो उसको प्लेस करवा देती है ताकि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है जो कि मैडम शाइस्ता अनवर के अंडर रन हो रहा है।
1: सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को ये भी बताइएगा कि हमारे जो आपने भी जिक्र किया था कि मूट कंपटीशन और मॉक कंपटीशन करवाए जाते हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये सिर्फ आपके विद इन डिपार्टमेंट ही होते हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरी किसी इंस्टीट्यूशन और लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके भी ये कॉम्पिटिशन जो है वो उस पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं?
2: जी बिल्कुल, ये एक पूरा एक प्रोसेस है मूटिंग का और मॉक ट्रायल का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल बेस को जोर देती है। और इसका प्रोग्राम है कि बच्चा हमारे पास जो आकर लर्निंग करे वो उसको जाते ही प्रैक्टिस में उसको फ़ायदा हासिल हो जाए। तो इसमें हमारा जो मूटिंग प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की लॉ सोसाइटी वो उसको देखती है, उसके अंदर बच्चे को जब कोई भी ऐड आता है डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो उसको प्रोवाइड करती है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में उसको जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके अंदर बच्चों को तैयार किया जाता है, बच्चे खुद भी उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, पढ़ते हैं, मुख्तलिफ जो केसेस हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अब उसके अंदर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और माशाल्लाह हमारे कई ऐसे होनहार तलबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ से विनर होकर या रनर अप रहकर आते हैं। इनमें जो सबसे खुशाइन बात ये है कि रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि अब 10th सेमेस्टर में हैं, शहरयार रब्बानी, उन्होंने इंटरनेशनली एक मूटिंग उसको विन किया है, उसका स्कॉलरशिप भी विन किया है, और बाली में जाकर वो कम्पीट करके आए हैं। इसी के साथ हमारे दूसरे जो मनाल हैं सेमेस्टर 10 के हैं, वो भी उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लम्स के अंदर भी जाकर अच्छी तरीके से विन करके आए हैं। इस तरह हमारा जो मूटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही एक उम्दा और एक स्मूथ वे से चल रहा है, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको हम बेहतर करते जाएँ। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास फैसिलिटी के अंदर हमारे लॉ साइट्स अवेलेबल हैं, जिनमें पाकिस्तान लॉ साइट हमारे पास अवेलेबल है, और इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान लॉ जर्नल वो भी अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ की आपने बात की है, तो हमारे पास डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएट भी लिया हुआ है, और वो ये है कि हम पैरेलल इसी सेमेस्टर के अंदर जो हमारे ऑड सेमेस्टर्स होते हैं जिनके अंदर इवन सेमेस्टर्स होते हैं जिनके अंदर हमारा 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें हमने मोटिंग और मॉक ट्रायल के लिए एडवोकेसी प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें एडवोकेसी 1, एडवोकेसी 2, 3, 4 और 5 चलते हैं। इसके अंदर हम इसी एडवोकेसी के अंदर सबसे पहले हम मोटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और मोटिंग के लिए हमने बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अहमद साहब, उनकी खिदमात हासिल की हुई हैं और वो उनको वॉच एंड वार्ड करते हैं। इसी तरह सेकंड में हमने फैमिली लॉज के अंदर एडवोकेसी स्किल 2 प्रोग्राम रखा हुआ है, जो कि फैमिली लॉज के ऊपर एक्सपीरियंशियल पूरा एनवायरनमेंट, जो अदालत का एनवायरनमेंट है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है कि केस किस तरह फाइल होता है, किस तरह क्लाइंट आता है, किस तरह उसे बातें की जाती हैं, किस तरह उसे डिस्कशन की जाती है, कौन सा लॉ प्रोवाइड किया जाता है, और किस तरह वो जाकर उसमें प्लीडिंग कर सकते हैं और फिर आज जाके उसको आर्गू कर सकते हैं। इसी तरह जो एडवोकेसी 3 है उसके अंदर क्रिमिनल लॉ को देखा जाता है, एडवोकेसी 4 में हम सिविल लॉ को देखते हैं, और एडवोकेसी 5 में हम ADR को देखते हैं, जो कि आजकल के करंट इश्यूज के अंदर ये जो लोगों को आपस में मिलाना आउट ऑफ द कोर्ट, उसके लिए बनाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये एडवोकेसी का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करता है, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
1: बिल्कुल सर, नो डाउट। सर मुझे बताइएगा, बल्कि हमारे सुनने वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कि ये जो एडवोकेसी आपने 5 लेवल एडवोकेसी स्किल्स की बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या फैकल्टी ऑफ लॉ के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सारी मौजूद है?
2: जी, हमने असल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, क्योंकि फोकस करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर, तो हमने जो अदालत का जो ओरिजिनल स्टाइल है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसी तरह की हमने यहाँ पर मोटिंग के लिए और मॉक ट्रायल के लिए अदालती निज़ाम, अदालती सेटअप बनाया हुआ है, जिसके अंदर इजीली उस तमाम एडवोकेसी स्किल को प्रोवाइड किया जाता
1: है। सर आपने हमें एडवोकेसी के लिए तो बता दिया, लेकिन आपने जिक्र किया था कि सेमेस्टर 10 के अंदर इनको एडवोकेसी लेवल में एक ADR जो है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो अब आपको पता है कि ADR जो है वो कोर्ट रूम्स के अंदर तो उस तरह से नहीं होता, तो क्या ADR ट्रेनिंग के लिए भी कोई अलग से वेन्यू आपके पास मौजूद है?
2: जी बिल्कुल, हमने ADR के अंदर हमारे पास पीस सेंटर मौजूद है, जो कि फुली फर्निश्ड है और फुली इक्विप्ड है। इसी तरह हमने उनके अंदर एक प्रोबोनो सर्विस के तौर पर लोगों को हायर किया हुआ है, लॉ सोसाइटी उसको भी देखती है। उसके अंदर हमारे पास जब भी कोई केस ऐसा आता है ADR का, तो वहाँ पर हम उनको फुली इंगेज कर देते हैं और पूरे का पूरा रूम उनके लिए अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास दूसरे तौर पर लॉ क्लिनिक मौजूद है, जो कि प्रोबोनो सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी हमारे पास इन कामों के लिए यूज़ होता है।
1: जी ठीक है सर, आप हमारे सुनने वालों के साथ जो है ना वो आप शेयर कीजिएगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ में, जैसे आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि इंटर्नशिप प्रोग्राम भी जो है वो होता है और दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर डिग्री, तो वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो किस सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है, और उसका थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और वो उसका ड्यूरेशन कितनी होती है, और क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है या फिर दैट इज़ ऑप्शनल?
2: जी बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ आपको कि हमारा ये डिग्री का हिस्सा होता है। हमने जो 10th सेमेस्टर पूरे करने होते हैं उनमें हमारे पास एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी होता है, जो कि आमतौर पर समर के अंदर आता है। समर जब हमारा फॉल का प्रोग्राम और स्प्रिंग का प्रोग्राम ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम उसको 8th सेमेस्टर के बाद उसको लॉन्च करते हैं, और इसके अंदर उनको डिफरेंट जितनी भी फर्म्स हैं उनके अंदर बच्चों को भेजा जाता है, और ये डिग्री के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर डिग्री मुमकिन नहीं होती। इसके लिए हमने क्रेडिट आवर भी रखे हुए हैं और वो डिग्री का हिस्सा बनाते हैं।
1: ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बड़ा ज़रूरी भी है, और आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो है दैट इज़ कंपलसरी और स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप में आप जो चीज़ें सीखते हैं वो ऑब्वियसली फिर वो आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं व्हेन यू आर लाइक गोइंग टू जॉइन योर प्रैक्टिस। सर आपने अभी तक जितनी भी बात की वो हमारी ज़्यादातर जो कॉम्पिटिशन्स थे, जो एक्टिविटीज़ थी, जो आपकी इंटर्नशिप्स थी, वो सारी की सारी हमारी लोकल्स नेशनल थी, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में आप किसी तरह की कोई इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कोई इंटरनेशनल कोलेबरेशन, कोई इंटरनेशनल कनेक्ट किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, किसी डिफरेंट बार्स के साथ, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों के साथ जाएँ, वो शेयर करें।
2: जी बिल्कुल, हम लोकली और इंटरनेशनली दोनों इसमें फोकस करते हैं। हमारे पास जो मीटिंग मैंने भी आपको बताया था कि वो मीटिंग पहले हमारे पास जो बाली के अंदर वो करके आए हैं, और अब वो दूसरा जो हमारे पास है वो अमेरिका के लिए, वो उसके यही शहरयार रब्बानी उसके लिए भी जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमने कोलेबरेशन के अंदर, जिसकी यूनिवर्सिटी कोलेबरेशन है, उसके अंदर भी हमने एक यूनिवर्सिटी जिसका यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड जो है उसके साथ हमने कोलेबरेशन की हुई है, और हम मज़ीद भी इंटरनेशनली लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं, उनसे कोलेबरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसका हिस्सा बने और हमारे स्टूडेंट्स उधर जा सकें और उनके स्टूडेंट इधर आ सकें, हमारे फैकल्टी मेंबर्स उधर जाकर ट्रेनिंग भी हासिल कर सके, उधर उनको पढ़ाने का मौका भी मिले, और बाहर के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान में आकर यहाँ पर उनको भी मौका मिले कि वो इधर आकर पढ़ाएं भी, और हमें अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो इधर आकर ट्रेन भी करें।
1: और सर, ये जो अभी आपने हमें बताया कि सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो आप फैकल्टी ऑफ लॉ का जो है वो एक कोलेबरेशन चल रही है, तो इसका जो मोड ऑफ है वो ऑनलाइन है या फिर ये किस तरह से इसको जो है वो आप कंडक्ट कर रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, वो ऑनलाइन ही है क्योंकि हमारा अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हम इसको बाहर कर सकें, ये ऑनलाइन है और रेगुलर बेसिस पे है। हम हर वीकली और 15 डेज के बाद हम उसको अरेंज करते हैं और उसके थ्रू अब इसको डिस्कशन करते हैं, और वो ही डिस्कशन फिर आगे बच्चों में पास ऑन हो जाती है।
1: आपका मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और दूसरा ये कि हम जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हम LLM के ऊपर करेंगे कि LLM का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, प्रोग्राम किस तरह के ऑफर किए जा रहे हैं, फैकल्टी कौन सी है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहीं फिर के सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6।

बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फैलाने में जो किरदार औलिया कराम ने अंजाम दिया वो नाकाबिले फरामोश है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो कि 1103 हिजरी 1291 को पांडू के जिला कसूर के एक सैयद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत सखी मोहम्मद दरवेश कूच गिलानिया से तरके वतन करके पांडू आ गए और यहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपका सिलसिला नसब हजरत खास पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हजरत सैयद अब्दुल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्द हकानी की इब्तदाई तालीम और तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत सैयद शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया हुई। बाद अज़ां आला तालीम के लिए अपने वक्त के इल्मी मरकज कसूर तशरीफ ले गए और मुर्शद कामिल हजरत शाह अनायत कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर रूहानी तालीम हासिल की। आप वहदतुल वजूद की मंजिलों को जानते थे, इसलिए हर शह को मज़र खुदा जानते थे। मुर्शद के लिए इंसान का दर्जा रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम अशार और काफियों के जरिए दीन मतीन की खिदमत की और पूरी जिंदगी तबलीग हक में गुजार दी।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 90.

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो, ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कम्प्लेन फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मेरी हमेशा लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी के आर के साथ। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम सर शाहिद से बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स कम्युनिकेशन है, उनसे प्रोफेशनल करियर और उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में। सर, अब ये बताएं कि प्रोफेशनल करियर से किस तरह से एकेडेमिया को ज्वाइन किया, कहाँ सोचा कि अब मुझे जो मैंने सीख लिया है मैंने जाके पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है, वेल ट्रेन करना है, ताकि जब वो मीडिया इंडस्ट्री में आए तो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज मैंने देखे उन्हें ना देखने पड़े।
4: अच्छा, मैं क्योंकि काम कर रहा था प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, और उसके साथ ही फिर मैंने टीवी चैनल्स को भी ज्वाइन किया, जिसमें मुझे जियो टीवी और दुनिया टीवी के साथ काम करने का कुछ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं वहाँ पे इंडस्ट्री में था तो मुझे कमी महसूस हुई कि जो मेरी एजुकेशन है मीडिया की वो उस तरह से नहीं है। मीडिया आपका ना टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, जो इसकी एक इसकी नेगेटिव चीज़ है कि मीडिया आपका टाइम ज़्यादा मांग रहा होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मेंटली भी और प्रैक्टिकली भी। और वो अगर आप घर वालों के साथ हो तो आपको कहीं ना कहीं गैप फील होता है कि आप घर वालों को आप थोड़ा सा कम टाइम देते हैं और मीडिया को आपको ज्यादा टाइम देना
3: पड़ता है, बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है।
4: तो वो उस वो मुझे भी फील हो रहा था कि मुझे घर वालों को टाइम की ज्यादा जरूरत थी, एक वक्त था कि मुझे अपने घर को ज्यादा टाइम दें। तो वहां मैंने सोचा कि मुझे जो प्रैक्टिकल फील्ड से निकल के थोड़ा सा एक तो पहले इसको लर्न करना चाहिए, जो भी इसकी डायनेमिक्स हैं, जो भी इसकी एजुकेशन है, ताकि मैं एक तो एक्सेल कर सकूँ, जब मेरे पास टाइम हो तो मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकूँ, और दूसरा कि मुझे घर के वालों के लिए टाइम भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें, एक तो मेरी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एजुकेशन मीडिया की वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो मुझे हासिल करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक एकेडेमिया की साइड पर आया, और दूसरा ज़रा मुझे टाइम भी चाहिए था। तो वो फिर मैंने स्विच किया, फिर मैंने अपनी जो एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन तो की हुई थी अपनी 12 साल के बाद, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मीडिया में मैंने मास्टर्स किया 2012 में, और फिर उसके साथ ही फिर मैंने एमफिल भी मीडिया में ही किया। मीडिया में जब मैंने एजुकेशन हासिल की तो फिर मुझे ये शौक भी हुआ कि अच्छा मैंने पढ़ा भी है इसको, और जब मैंने एजुकेशन हासिल की तो मुझे फील हुआ उस टाइम पे कि वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और वो जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड से आया था। मैंने ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, फीचर फिल्म से उनके साथ भी मैंने काम किया, फिर जो पाकिस्तान के टॉप के टीवी चैनल्स हैं जियो टीवी, दुनिया टीवी, और इवन स्पोर्ट्स टीवी जो है 10 स्पोर्ट्स, उसके साथ भी मैं काम कर चुका था। तो मुझे फिर फील हुआ कि वो एक गैप है बीच में, जो कि एकेडेमिया का और प्रैक्टिकल फील्ड का, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो मैंने उस वक्त फिर सोचा कि अभी मेरे पास कुछ और टाइम है जो कि मैं घर वालों को दे सकता हूँ, और तो उस दौरान एक एकेडेमिया एक ऐसी फील्ड थी कि जो मैंने कोशिश की और जो मेरी ख्वाहिश भी बन गई कि मुझे जाना चाहिए एकेडेमिया में, और वो स्टूडेंट्स जो कि नए नए आ रहे हैं मीडिया में और मीडिया को समझना चाह रहे हैं और उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे मैं जाके मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोई टिप्स उनको दे सकूँ, कोई प्रैक्टिकल के साथ जो एजुकेशनल है जो गैप है मैं उसको फिल कर सकूँ। तो यही मेरी ख्वाहिश थी, और फिर मैंने उसको पूरा करने के लिए फिर एकेडेमिया को ज्वाइन किया, और यहाँ आने का ज़रा मेरे ख्याल में मेरा एक अच्छा बेहतर फैसला था कि मैं एकेडेमिया में आया। ना सिर्फ उससे मेरी अपनी लर्निंग बढ़ी, बल्कि वो जो कुछ मैंने लर्न किया था मीडिया से भी और एकेडेमिया से भी, वो मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाया।
3: और सर, जब आप स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते हैं, जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं वो कितने एंथुजियास्टिक आपको फील होते हैं, आपको क्या उनको पढ़ाते हुए फील होता है कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये बेहतर तौर पर, और उनको आप किस तरह से मीडिया और इंडस्ट्री एक्सपोजर के बारे में समझाते हैं?
4: अच्छा, फिल्म के स्टूडेंट्स स्पेशली होते हैं, वो ज़्यादा वो ज्वाइन करते हैं, वो एक शौक के साथ तो आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें शौक तो ज़रूर होता है कि हम फिल्म बनाएंगे, फिल्म के लिए काम करेंगे या ऑन स्क्रीन काम करेंगे टीवी ड्रामा के लिए, लेकिन उनमें वो जो सिर्फ शौक की हद तक तो कुछ बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो फीलिंग आ रही है और जो बच्चे हमारे पास आ भी रहे हैं और एक्सपीरियंस हो रहा है, उनमें वो जो जोश और जज्बा होना चाहिए और वो काम करने की लगन होनी चाहिए, उसमें कमी है। और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, और जब वो ये देखते हैं कि इस फील्ड में कितनी सख्ती है या कितनी रिक्वायरमेंट है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो अभी एंथुजियाज्म ज़रा है, और जो है जिन बच्चों में तो वो एक्सेल भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा जो हम अपने टीचर्स यहाँ से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो उनसे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद वक्त के साथ शायद कुछ कम हुई है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपना गोल सेट नहीं कर पाते कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में आते हैं तो उनका एक्चुअल गोल क्या है, क्या वो ऑन स्क्रीन काम करना चाहते हैं या बैक स्क्रीन काम करना चाह रहे हैं, अगर बैक स्क्रीन है तो बैक स्क्रीन में कौन कौन सी ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा बच्चों को, हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हम बच्चों को ये चीज़ें डिलीवर कर सके और उनको जो मीडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहुंचा सके, जिसमें आवाज़ भी है, ऑडियो है, वीडियो है, विजुअल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, एनिमेशन हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारा स्किल सेट हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। लेकिन बच्चा किस एक या दो या ज़्यादा स्किल सेट को अपनाता है ये उसकी उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे उस स्किल सेट को हासिल नहीं करते, शायद अपने दीगर वजूहात की बिना पर, लेकिन अगर वो स्किल सेट को हासिल करें तो यकीनन वो एक्सेल कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा के बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में क्या ऐसी सर्टेन टास्क हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि उन्हें पहले से आइडिया हो कि जब हमने मीडिया एक्सपोजर लेना है तो हम ये सब चीज़ें हैं या ये फील्ड या कैरियर है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं।
4: देखिए, ऑन कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को डायरेक्टली नज़र आ रही होती है और हर कोई ये समझता है कि मैं ऑन कैमरा आ सकता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। हमें अपना एनालिसिस करना, स्टूडेंट्स को अपना एनालिसिस करना कि क्या वो ऑन स्क्रीन के लिए ठीक हैं या नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैक ऑफ द कैमरा भी काम करते हैं तो आपने ये बेस्ट एनालाइज करना है कि ऑन कैमरा क्या अच्छा लग रहा है, कौन से फेजेस ऐसे हैं जो कि अच्छे लग सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बोलने में अच्छे हैं या परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। ये आपका अगर आप अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे दूसरों के बारे में तो आप अपने के बारे में भी ये अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे। तो ऑन कैमरा की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो आपकी अपीयरेंस काउंट होती है। अपीयरेंस का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती क्योंकि हर शख्स के लिए डिफरेंट है, और जब हम ऑन स्क्रीन के लिए काम करते हैं तो हमारे जो करेक्टर्स हैं, जो हमारी कहानी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। वो खूबसूरती किसी के मोटे होने में भी है, किसी के पतले होने में भी है, किसी के स्मार्ट होने में भी है, किसी के गोरे होने में भी है, और किसी के काले होने में भी है, क्योंकि हमारे जो किरदार है ना, कहानियाँ तो किरदारों से बनती हैं और हर किरदार एक मुख्तलिफ किस्म का रोल प्ले कर रहा होता है, अपनी कहानी को किस तरह से आगे लेके चल रहा होता है। तो लेकिन स्क्रीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो किरदार है वो लोगों तक असल में रियलिटी के साथ लोगों तक पहुंच पाए ना, तो उसमें लोगों का, उसमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो एक्टिंग की स्किल है स्पेशली वो बेहतरीन हो, और अगर वो प्रेजेंटेशन न्यूज़ चैनल्स में के हवाले से देखते हैं कि वो ऑन स्क्रीन न्यूज़ एंकर हैं या वो प्रोग्राम के होस्ट हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ आपकी अपीयरेंस काउंट होगी बल्कि जो दूसरी चीज़ है, आपका वर्बल जो आप बोल रहे होते हो, जो आपका नॉलेज है, जो आपका
3: कम्युनिकेशन
4: स्किल है और स्टाइल है, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। और ज़रा जो टीवी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आपको फ्लुएंसी भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, और आपको करंट अफेयर्स का मालूमात होना भी ज़रूरी है, और आपका फ्लुएंट होना भी ज़रूरी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन स्क्रीन के लिए काउंट होती हैं। तो वो सब स्टूडेंट्स ज़रा वो नहीं हो सकता, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ तरह से पैदा किया हुआ है। तो ये एक तो अपना एनालिसिस करना कि हम ऑन स्क्रीन के हैं या नहीं है, अदरवाइज ऑफ स्क्रीन पे बेशुमार काम है। पहला जो स्किल सेट है वो आपका राइटिंग का है। जो मीडिया में जो भी स्टूडेंट आता है, जो भी शख्स आता है, उसकी जो मेन असल स्किल है वो उसकी राइटिंग की है, कि अगर वो लिख सकता है ना तो फिर उसके पास एक बहुत बड़ी स्किल है। पाकिस्तान में क्या मीडिया जहाँ पे भी है, आपके राइटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि आपने लिखना क्या है, क्योंकि जो लिखा जाएगा वही बोला भी जाएगा और वही पेश भी किया जाएगा, परफॉर्म भी किया जाएगा। तो लिखने की स्किल से ही स्टार्ट होता है मीडिया हमेशा, कहीं से भी आप ड्रामा में चले जाएं, फिल्म में चले जाएं, न्यूज़ इंडस्ट्री में चले जाएं, प्रोग्राम में भी चले जाएं, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत अच्छा पे भी करती है और आपका नाम भी बनाती है। हम राइटर्स के, पोएट्स के नाम गिन सकते हैं कि कितने कितने फेमस लोग रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा, राइटिंग के अलावा, जब आपका हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, एक नॉर्मली जो सेकंड टीयर आपका कहलाता है, कि जो चीज़ें बनाने वाला, जो प्रोड्यूस करने वाला, वो डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्शन भी आपकी एक अहम है कि आप बहुत सारी चीज़ें ड्रामा के लिए, फिल्म के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, रेडियो के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो सारी की सारी फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्टर्स को, उनको टैलेंट में, उनको बजट्स में, उनको लोकेशंस में, उनको जितने भी रिसोर्सेज बैकग्राउंड में चाहिए होते हैं उसके लिए। तो प्रोड्यूसर्स एक बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है बैकग्राउंड में। देन आपकी जो स्किल सेट है वो आपका और ज़्यादा वसी हो जाता है, आपकी कैमरा की ऑपरेशंस आ जाते हैं कि आप किस तरह से जो स्क्रीन के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट करते हो, जो कि विजुअल लैंग्वेज है, वो कैमरा के थ्रू आप किस तरह से रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ठीक है। फिर कैमरा के साथ आपका ऑडियो आ जाती है कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स किस तरह से आप करते हो, और ऑडियो की एक बहुत बड़ी गेम है म्यूज़िक इंडस्ट्री, आपकी साउंड की, आपकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपकी स्किल सेट में ऑडियो की रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक की प्रोडक्शन आ जाती है बहुत बड़ी। देन आपकी जो प्रोडक्शंस हैं, डिज़ाइन, जो आपका क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव में आपका जितने भी सेट्स लगते हैं, जो कुछ भी डिज़ाइन बनता है, स्क्रीन के लेआउट्स बनते हैं, वो सारे का सारा उसमें आ जाता है कि आप डिज़ाइनिंग में या आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो एडिटिंग है, एडिटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और एक मेन स्किल है कि आपने जो भी ऑडियो वीडियो फोटोज हैं उनको आपने एडिट करना है, और तो एडिटिंग की एक स्किल भी बहुत अहम काउंट होती है। और आजकल अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का जिस तरह से दौर है और डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया में जो चीज़ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम काउंट होती है, अगर आप एक आपकी राइटिंग और दूसरी आपकी एडिटिंग, और ये वो दोनों ऐसी चीज़ें जो आप आराम से विदाउट एनी क्या कहते हैं कहीं पे जाए बगैर भी सिर्फ एक जगह पे बैठ के भी आप काम कर सकते हैं कि आप लिखें और जस्ट एडिट करें और आपकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाती है। यानी डिजिटल मीडिया ने एक किस्म का एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया
3: है कि
4: एक बड़ी एक जो बड़ी प्रोडक्शन जो है जो कि जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा बजट लगता था उसको बहुत शॉर्ट कर दिया। तो ये वो स्किल्स हैं। फिर आपकी एनिमेशन हैं, आप एनिमेशन में कर सकते हैं, VFX में कर सकते हैं, डिजाइन में कर सकते हैं। देर आर सो मैनी बैकग्राउंड स्किल्स हैं जिनको आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और बच्चों को उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्रीन जो है वो ऑडियो की स्क्रीन है या वीडियो की स्क्रीन है उसके लिए काम करते हैं तो सारी की सारी बैकग्राउंड पे जो काम वर्कर्स की वजह से कंपाइल हो पाती है। तो बहुत सारी स्किल्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं। जब हम टेक्निकल में जाते हैं और कैमरा में फर्ज किया हम जाते हैं, तो कैमरा जस्ट लाइक हम कैमरा मैन को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा मैन के साथ जो कैमरा के हैंडलर्स हैं वो भी होते हैं, जो डिफरेंट एसेसरीज होती हैं जो इनके यूजर्स होते हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, कि जो ऑडियो ऑपरेटर है, जो साउंड ऑपरेटर है, जो आपका जिप का ऑपरेटर है, जो आपका फोकस पुलर है, ठीक है, तो उसके साथ बहुत बड़ी स्किल सेट बनता है और वो हाईली पेड भी है। तो बच्चों की सोचना चाहिए कि अगर हम ऑन स्क्रीन नहीं कर रहे तो ऑन स्क्रीन के लिए अगर कंटेंट बना रहे थे उसके बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए बेशुमार एक लंबी लिस्ट है जिसपे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं और जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो जो टेक्निकल होगा ना उसकी वर्क फोर्स की भी कमी है, अच्छा टेक्निकल जो वर्क फोर्स है उसकी भी कमी है, और उसके लिए बाज़ का जैसे हमारी फिल्म्स बनती हैं मार्केट में और उसके लिए बहुत सारे लोग वो बाहर से हायर करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद पाकिस्तान में काम करने वाले लोग उस तरह से ट्रेन नहीं है, तो नई नई जितनी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है और उसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे लोग बाहर से हायर होते हैं।
3: सर आपने इतनी डिटेल में बताया ऑनसेट और ऑफ स्क्रीन काम करने का किस किस तरह से डिफरेंट है, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यूजुअली हमें यही पता होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर हॉस्ट या एंकर, लेकिन आपने जितना डिटेल बताया मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और मेरे सामाइन ने इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ میں ہوں مریم ارشاد، لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن، پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں پرنسپل لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن سر شاہد۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ آن اسکرین اور آف اسکرین کس کس طرح کے کیریئر اپرچونیٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹ اویل کر سکتے ہیں۔ سر آپ نے بات کی تھی کہ ایڈیٹنگ کی، کیمرہ ہینڈلنگ کی، کیمرہ آپریشنس کی، اور اس طرح سے بہت سارے کریٹو ڈیزائن جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سے اپنے آپ کو اور اپنے کیریئر کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہمارے لسنرس کو بتانا چاہیں گے کہ ہم کس طرح سے فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن میں اسٹوڈنٹس کو ویل ٹرین کر رہے ہیں ان سب ریگارڈس میں۔
2: اچھا مس پری، میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو یو سی پی ہے، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے، اور اس کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا ون آف دی بیسٹ میڈیا اسکول ہے، جو کہ آپ کو ٹیکنیکل فیسلٹیز کے حوالے سے، فیکلٹی کے حوالے سے بیسٹ ہے، کہ یہاں پہ آپ کو جو اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ دیگر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ شاید اس ٹائپ کا ماحول بھی نہیں ہے اور اس ٹائپ کا اکوپمنٹ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھا جائے تو ہمارا جو یو سی پی کا میڈیا اسکول ہے، اس میں ایک اپنا ریڈیو چینل ہے جس کو ہم ایف ایم 92 کہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ ریڈیو کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے جو کہ 24/7 جو ہے ہمارا چینل چل رہا ہوتا ہے ریڈیو کا، اور جس میں آپ آواز کو لے کے اور ڈفرینٹ جو ریڈیو کے پروگرامز ہیں اس کا اسکل سیٹ جو ہے سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پروڈکشن ہاؤس ہے، ٹی وی کا پروڈکشن ہاؤس ہے جو کہ نیوز کے حوالے سے تو ڈیزائن ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیٹ نیوز کا، پروگرام کا، اور کروما کے حوالے سے بھی یہاں پہ موجود ہے فیسلٹیز، اور لیٹسٹ کیمراز ہیں، اور جو دیگر اکوپمنٹ ہے جس میں لائٹنگ اور ساؤنڈ ہے وہ سارے سارا اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ٹی وی کا جو ہمارا پروڈکشن ہاؤس ہے، یہ نہ صرف لائیو پروگرامس بھی کر رہا ہوتا ہے بلکہ ریکارڈیڈ پروگرامس بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کلاسز کے علاوہ بھی یہ اویلیبل ہوتا ہے، اور یہاں پہ بچے اپنا اسکل سیٹ کو بڑھاتے ہیں، اور یہاں پہ پراپر پی سی آر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیب ہے جو کہ کمپیوٹر لیب ہے، وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ نیو لیبس ہیں، جہاں پہ لیٹسٹ کمپیوٹرز ہیں جو کہ نہ صرف گرافکس کے لیے بلکہ اینیمیشنس کے لیے اور ایڈیٹنگ کے لیے بھی سوٹیبل ہیں، اور آپ کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ کو بھی اور ڈیزائن کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اسکل سیٹ ہے، یہ وہ اکوپمنٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کو، میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ چاہے پی آر کا ہو، ایڈورٹائزنگ کا ہو، فلم کا ہو، ڈرامے کا ہو، یا جرنلزم کا ہو، تو ان کے لیے، سب کے لیے یہاں پہ پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ ہمیں سکھائی بھی جاتی ہیں، اور بچے اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کا اسکل سیٹ بڑھتا ہے۔ تو بچوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ صرف وہ سیکھ رہے ہیں، بہترین ہمارے پاس فیکلٹی ہے جو کہ نہ صرف پی آر میں، ایڈورٹائزنگ میں، فلم میں، ریڈیو میں کی اسپیشلائز ہے، بلکہ وہ یہ اسکل سیٹ بچوں تک پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ بچے خود سے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھی بات یہ کہ ہمارا جو کنیکشن ہے انڈسٹری کے ساتھ بھی ہے اسکول کا، اور ہمارے بہت سارے بچے جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ ان کو ریفر بھی کرتی ہے، اور ان کو انٹرنشپ بھی دلوائی جاتی ہیں، اور پھر ریکروٹمنٹ کی ڈرائیوز بھی ہماری چل رہی ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمس بھی ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ کی ایجنسیز بھی ہیں، وہ نیوز کے ٹی وی چینلز بھی ہیں، اور وہ ڈفرینٹ پروڈکشن ہاؤسز بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے نہ صرف اسکل سیٹ حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کو انڈسٹری میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں، اور نہ صرف وہ جاتے ہیں بلکہ وہ اسکل سیٹ سیکھتے بھی ہیں اور پھر مارکیٹ میں کام بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے بچے کافی سارے، ڈھیر سارے بچے ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا نام بھی بنا رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں۔
1: سر ابھی جیسے آپ بات کری تھی کہ ایڈیٹنگ کے پراپر ہمارے پاس سافٹ ویئرز بھی ہیں اور ہمارے پاس بلڈ ان لیبس ہیں جس میں بہت اچھے سے ایڈیٹنگ سکھائی جاتی ہے، تو وہ کون سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو بہت ایزی ٹو یوز ہیں جو بگنرز بھی یوز کر سکتے ہیں؟
2: دیکھیں ایڈیٹنگ کے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جس میں، لائک اگر ہم آڈیو کی ایڈیٹنگ کی بات کریں تو ہمارے آڈیشن ہوتا ہے اور ساؤنڈ فورج وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی بات کی جائے تو اڈوب کا ہی پریمیئر جو ہے عام طور پہ اس کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا یوزیج زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہو جس میں کہ گرافکس سے کہ جی انٹر لنکڈ ہیں، جو ایڈیٹنگ ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، جس میں آپ کی امیج کی ایڈیٹنگ اور اینیمیشن کی ایڈیٹنگ اور ساؤنڈ کی ایڈیٹنگ ساری ساری مرج اور مکس اینڈ مرج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اور بھی ہیں، اڈوب اینیمے ہیں جسے ہم اینیمیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، اینیمیشنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 3D کے سافٹ ویئرس بھی ہیں، اینیمیشن کو ہم 3D के एनवायरनमेंट में करना चाहें, फिर डिज़ाइन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें यूआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर्स वो सारे जो मार्केट में इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो हमारे पास सिस्टम्स और लैब्स ऐसी हैं कि वो बच्चे उसको ना सिर्फ अच्छे तरीके से उस पर कर सकते हैं बल्कि वो वहाँ पे उस पर प्रोड्यूस भी ढेर चीज़ें कर रहे होते हैं।
1: और सर अगर हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास क्या हम वेल इक्विप्ड हैं और हम स्टूडेंट्स को ऑपरेट करना सिखाते हैं?
2: जी बिल्कुल, हम ऑपरेट करना भी सिखा रहे होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हमारा ना सिर्फ टीवी के जो प्रोडक्शन हो सिर्फ वहाँ पे ऑडियो की प्रॉपर जो इसके माइक्स रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो प्रोफेशनल माइक्स हैं वो सारे किस्म के माइक्स अवेलेबल हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए हमारे नॉर्मल मित्र वायरलेस माइक्स भी होते हैं, बूम माइक्स भी होते हैं, केबल माइक्स भी होते हैं, वो सारे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास रेडियो की फैसिलिटी है कि रेडियो में भी जो आउंड है, जो साउंड है, जो और ज़्यादा अगर आपने ज़्यादा प्रोफेशनल वे में करनी हो तो रेडियो में हमारे पास वो साउंड का प्रॉपर इक्विपमेंट है, वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हो रही होती हैं और लाइव भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, तो साउंड के हवाले से भी यूसीपी में बेहतरीन फैसिलिटीज भी हैं और इक्विपमेंट भी है।
1: अच्छा सर, जब स्टूडेंट्स कैमरा या कोई भी अदर इक्विपमेंट कोई ऑपरेट करने वाले होते हैं तो आप उनको क्या गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको फील्ड में लेके जाके कैसे यूज़ करना है, क्लास के अंदर? आप, मैंने देखा है कि अक्सर मैं स्टूडेंट्स की पोस्ट और स्टोरीज देखती हूँ, वो वीडियोज़ लगा रहे होते हैं कि सर शाहिद की क्लास है और सर सिखा रहे हैं, तो कितना टेक्निकल हो जाता है और आप उसमें किस तरह से उन्हें गाइड कर रहे होते हैं?
2: देखिए टेक्निकल ज़रा कोई भी इक्विपमेंट है तो उसको एटलीस्ट उस इक्विपमेंट का ना होना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ना, और वो ना हो तभी आता है जब आपके इक्विपमेंट आपके हाथ में है और आप उसको ऑपरेट करना शुरू करें। सर ये बहुत नाजुक चीज़ें तो होती हैं, आपको बड़ी डेलिकेसी के साथ इन चीज़ों को इक्विपमेंट को यूज़ करना होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन एटलीस्ट सिर्फ इसकी डेलिकेसी पर नहीं जाना। जब तक आप किसी भी टेक्निकल चीज़ को, किसी भी इक्विपमेंट को पर्सनली खुद यूज़ ना कर सके आपको उसका आइडिया नहीं होता। तो डिफरेंट ब्रांड्स के आपके कैमराज, लाइट, साउंड की चीज़ें होती हैं, इनको इसकी डेलिकेसी को साइड पे रखे इसको यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि आप इनको ऑपरेट करें, खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें। वो स्टूडेंट्स जो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद से करते हैं, खुद से इन इक्विपमेंट के साथ प्ले करते हैं और देखते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ज़्यादा लर्न कर पाते हैं। जस्ट ये देखना कि कोई और कर रहा है और ये इक्विपमेंट मौजूद है, उसके मौजूद होने से कुछ भी नहीं होगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को ज़्यादा हम चीज़ें बताते भी, और बहुत सारे बच्चे जिनको शौक़ होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है कैमरा में, लाइट में, साउंड में, वो ना सिर्फ क्लास में भी उसको उन चीज़ों को, इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं बल्कि क्लास के बाद भी उनको एक्सरसाइज करते हैं।
1: और सर आप हर स्टूडेंट को उसको प्रैक्टिकली करना सिखा रहे होते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश तो ये होती है हम सब स्टूडेंट्स को वो चीज़ें करवाएं प्रैक्टिकल, क्योंकि है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बगैर जो मीडिया की स्पेशल विजुअल स्क्रीन की जो ट्रेनिंग है वो नामुकम्मल रहती है।
1: और सर हमारे सुनने वालों को, स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि जब वो कैमरा हैंडलिंग या लाइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करें तो वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको उन्हें फॉलो करने?
2: देखिए मार्केट में क्या काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी चीज़ विजुअल क्रिएट कर रहे हो कैमरा के थ्रू, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपने क्या लाइट करनी है और किस किस्म का फ्रेम बनाना है। उसके लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो हमारी स्क्रीन की जो गाइडलाइंस हैं, जो उसकी ग्रामर है स्क्रीन के लिए वो क्या है। अगर वो आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे, सिर्फ कैमरा को ऑन करना ज़रूरी नहीं है हर, क्योंकि आजकल हर शख्स ही कैमरा का यूज़र है, आपके मोबाइल ने आपको इतना फैसिलिटेट कर दिया कि आप कैमरा को यूज़ कर सकें, और उसमें भी जिस वो लोग जो कि एजुकेटेड तो नहीं होते लेकिन एस्थेटिकली उस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अच्छा विजुअल क्रिएट कर पाते हैं। तो स्टडी में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि इक्विपमेंट का स्किल सेट तो हासिल करना बहुत ज़रूरी है लेकिन आपको एस्थेटिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन सा विजुअल क्रिएट कर रहे हो और कैसा क्रिएट कर रहे हो और उसको आप आल्टर कैसे कर सकते हो, उसमें आप तब्दीली क्या ला सकते हो, और ख़ुद से विद इन फ्रेम किस किस्म के सब्जेक्ट को आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हो, ये बड़ा अहम है कि उस फ्रेम में उस कैमरा के जरिए आप लोगों को दिखा क्या रहे हो। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा एजुकेशन के साथ भी और आपके अपने एस्थेटिक्स के साथ भी, आप किस तरह से एस्थेटिकली चीज़ों को, रंगों को और प्रेजेंट करते हैं लोगों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें कि स्क्रीन पे क्या और कैसे दिखाएं।
1: सर लाइटिंग के बारे में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे?
2: देखिए लाइटिंग आमतौर पर तो नॉर्मली नेचुरल लाइट का बड़ा एक ट्रेंड है, रियलिटी बेस्ड लाइटिंग होती है कि हम रियल में जो जैसे नज़र आ रहा होता है वैसा भी प्रेजेंट करें, लेकिन बाज़ का टीवी की और फिल्म की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को पहले से बेहतर करके दिखाना चाह रहे होते हैं। तो लाइटिंग को समझना कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी लाइट के कलर्स क्या हैं और कोई ख़ास कलर कोई क्या मूड क्रिएट कर सकता है, और कोशिश होती है कि आप नेचुरल रहते हुए लाइटिंग को करें, लेकिन लाइटिंग बहुत वसी है, आपका विजुअल लाइट से ही क्रिएट होता है। और कैमरा की जब टेक्निक्स को बता रहे होते हैं उसमें हमारा मेनली फोकस ना सिर्फ कैमरा के टूल्स पे तो होता है, वो बेसिक होता है, लेकिन लाइटिंग पे ज़्यादा होता है कि लाइटिंग से आपने किस तरह से डिफरेंट मूड्स एंड एनवायरमेंट्स कैसे क्रिएट करने, तो लाइटिंग को अब मोस्ट फोकस किया जाता है ड्रामा में भी और फिल्म में भी।
1: और सर बिल्कुल एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जब वो ये फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं वो किस अप्रोच के साथ ज्वाइन करें और मीडिया फील्ड में आने के बाद वो किस किस प्रॉब्लम को किस किस तरह से साइड पे रख के अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं।
2: देखिए स्टूडेंट जो मीडिया की एजुकेशन हासिल कर रहा है उसको बड़ा फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि वो मीडिया की इंडस्ट्री में क्या करना चाह रहा है, वो डायरेक्शन करना चाह रहा है, वो ऑन स्क्रीन काम करना चाह रहा है, वो बैक स्क्रीन काम करना चाह रहा है, वो एडिटिंग करना चाह रहा है। अगर उसका गोल सेट होगा तो उसे ये पता होगा कि मैंने क्या करना है। और बाकी क्योंकि सारी चीज़ें सिखाई तो जा रही होती हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे स्किल सेट को हासिल करते हैं, वो साउंड को, विजुअल को, एडिटिंग को, स्क्रिप्ट को, सबको सीखते हैं और उसको एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने गोल ओरिएंटेड नहीं होते। जब आपका बस आपको कोशिश होती है कि अपना स्किल सेट कायम करें, आपको एक स्किल हासिल करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें, आपको एक दो तीन स्किल्स आनी चाहिए। और अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो फिर आपका स्किल सेट और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल टारगेटेड होना है। आपके पास 4 साल होते हैं, आप हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में से आपने चूज़ करना है कि आपकी नीश क्या है, कि आपको क्या पसंद है, और जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से काम करें। अगर आपने ऑन स्क्रीन काम करना है तो फिर अपनी आवाज़ को बेहतर करें, रेडियो को भी ज्वाइन करें, आप एक्टिंग के लिए थिएटर को भी करें और ऑन स्क्रीन के लिए आप काम भी करें। डिजिटल बहुत बड़ा मीडियम है, ठीक है? तो अगर ऑन स्क्रीन है तो फिर ऑन स्क्रीन के तकाजों को पूरा करें आप, क्योंकि आवाज़ और विजुअल दोनों ही चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। और अगर बैक स्क्रीन पे हैं तो फिर आप पूरी डायरेक्शन को उसकी समझें, स्क्रिप्ट को भी समझें, एक्टर्स को भी समझें, एडिटिंग को भी समझें, साउंड को भी समझें, म्यूजिक को भी समझें और उसको प्रैक्टिस करें। और देखो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। फिल्म के स्टूडेंट्स की एक वो नाकामी की एक वजह ये भी थी कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ बनी हुई हम देख रहे हैं वो आसानी से बन जाएगी, तो ऐसा नहीं। हर चीज़ को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। खाना भी बनाना हो तो वो सारे इन्ग्रीडियंट्स इकट्ठे करके आपको टाइम देना पड़ता है। तो स्क्रीन के लिए काम करने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। और ये यूनिवर्सिटीज़ होती इसलिए कि आपको ना सिर्फ सिखाया जाता है बल्कि आपके पास गलती का चांस होता है। जब आप काम करोगे तो आप कुछ ना कुछ गलती भी करोगे और वो गलती आपके सीखने के लिए होती है। वंस यू आर इन ए मार्केट तो फिर आपके लिए मसला होगा कि वहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वहाँ पर अगर आपको काम करना होगा तो फिर आपको प्रॉपर और परफेक्ट करना होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप यहाँ पर एक्सरसाइज करें। आप गलती अगर करते हैं तो गलती सीखने के लिए होती है। आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी बेहतरी आएगी और आपका निखार आएगा।
1: थैंक यू सो मच सर शाहिद, आप साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। आपने एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से मुझे और मेरे सुनने वालों को गाइड किया। इसी के साथ हम करते हैं अपने फैकल्टी प्रोग्राम का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक बेहतरीन गेस्ट के साथ मजीद फिर आएंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुताबिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: तू ही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

पर फन एंटरटेनमेंट न्यूज नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6.

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।